40s, 50s, 60s और 70s से निकले हुए चुने हुए संगीत। अगर हमारे प्रोग्राम में आप पहली बार शामिल हो रहे हैं तो आपको याद दिला दें, हर रविवार को मैं आपका साथ देता हूं स्टेशन 17 ऑन ब्रिस्बेन पर संगीत की झनकार नामक कार्यक्रम को लेकर। मैं हूं आपके साथ ही फिरोज खान। आपका ली हुई 40s, 50s, 60s और 70s से निकले हुए चुने हुए संगीत। अगर हमारे प्रोग्राम में आप पहली बार शामिल हो रहे हैं तो आपको याद दिला दें, हर रविवार को मैं आपका साथ देता हूं स्टेशन 17 ऑन ब्रिस्बेन पर संगीत की झनकार नामक कार्यक्रम को लेकर। मैं हूं आपके साथ ही फिरोज खान। आपका यात्रा कराते हैं आपके लिए हम पेश

0: मैं आपको याद दिला दूं कि हर रविवार की सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक हम आपके लिए पेश करते हैं इस्लामिक प्रोग्राम स्टेशन पर सवाल और जवाब हजरत मौलाना फजल दाद के साथ सनराइज रेडियो ब्रेडफर्ड से। फिलहाल तैयार हो जाइए, कॉफी तैयार है ना, चलो सफर करते हैं।
1: वक्त लकीरें खींचता है इंसानी चेहरों पर, बीते समय पर वक्त चला जाता है, ये लकीरें ठिठक जाती हैं, छूट जाती हैं, देर तक अपने होने का एहसास जगाती, इन लकीरों पर चंद नई लकीरें उभरती हैं, कुछ पहले से और ज्यादा साफ और अलग, ये अपनी अलग छाप या पहचान या छोड़ जाती हैं यादें,
2: यादों का सफर।

उसके होंठों पे मेरा नाम जब आया होगा, खुद को रुसवाई से फिर कैसे बचाया होगा। सुन के तो आना था फसाना मेरी बर्बादी का, क्या उसे अपना सितम याद न आया होगा।

0: ये है रेडियो ब्रिस्बानी 79.1 ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन्स फर्स्ट 24/7 हिंदी रेडियो स्टेशन।
1: अपना तो बना कर देखो,
0: जी हाँ अपना तो बना कर देखो। वी प्रेजेंट, यू डिसाइड, यू फोन अस ऑन 3279-1701। वी लिसन टू यू बिकॉज़ यू लिसन टू अस। संगीत की झंकार पर आप सुन रहे हैं यादों का सफर, आपका साथ फिरोज खान।

0: ब्रिस्बन की पहली पसंद 79.1 ब्रिस्बानी AM
1: रेडियो वो हो जिसमें महबूब का दम हो, रेडियो वो जिसमें महबूबा की सांसें हो, रेडियो वो जिसमें समाज सेवा हो।

0: रहना।
1: बिखरी तेरी जो जुल्फ घटा याद आ गई, बिखरी तेरी जो जुल्फ घटा याद आ गई, फिर मैं कदे की मस्त फिजा याद आ गई।

0: हम रेडियो हो जिसमें महबूबा की सांसें, रेडियो हो जिसमें समाज सेवा हो। सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सेवा, इसी स्टेशन के सहारे हम करते हैं आपके साथ। फीजी समाचार, भेंट वार्ता, स्थानीय समाचार, सामाजिक सूचनाएं, सुनते रहिए।
1: संगीत की झनकार पर ये है यादें।

वो कह के चले इतनी मुलाकात बहुत है, मैंने कहा रुक जाओ अभी रात बहुत है। आंसू मेरे थम जाए तो फिर शौक से जाना, ऐसे में कहाँ जाओगे बरसात बहुत है।

प्यार की मीठी मीठी किसक, प्यार की मीठी मीठी किसक, आंखों में पहले पहले प्यार की नमी, सोचों में किसी की खूबसूरत चेहरा और तरोताजा गुलाब के सुर्ख फूल।

0: संगीत की झनकार पर ये है यादें।
1: दूर पहाड़ों के बादल उलझे उलझे गुलपोश चमन, चुपचाप से तुम गुनमान से हम अरमान मचलने लगते हैं। भूले बिसरे यादों के लिए हम यादों के सफर पर चलते हैं। मैं जानता हूं लंबा है सफर, इसमें कहीं रात तो होगी,

संगीत की झंकार पर आप सुन रहे थे यादों का सफर। हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक हम आपके लिए पेश करते हैं संगीत की झंकार, जिसमें जिसका शुरुआत हम करते हैं यादों के सफर के साथ, चुने हुए लोकप्रिय संगीत पुराने फिल्मों से निकाली हुई। और अगले गीत यादों के सफर के आखिरी गीत के बाद हम आपके लिए पेश करेंगे हिट्स ऑफ 90s। अगले रविवार को इंतजार कीजिए और साथ दीजिए हिट्स ऑफ 40s, 50s और 60s से निकाली हुई चुने हुए संगीत यादों का सफर।

0: रेडियो वो हो जिसमें महबूब का दम हो, रेडियो वो जिसमें महबूबा की सांसें हो, रेडियो वो जिसमें समाज सेवा हो।
1: दिल दिल से मिला कर देखो,
2: ये है रेडियो ब्रिस्बानी 79.1 ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन्स फर्स्ट 24/7 हिंदी रेडियो स्टेशन।
1: अपना तो बना कर देखो,
2: जी हाँ अपना तो बना कर देखो। वी प्रेजेंट, यू डिसाइड, यू फोन अस ऑन 3279-1701। वी लिसन टू यू बिकॉज यू लिसन टू अस।

0: एक दो दिन नहीं, हम आपके साथ हफ्ते में हर दिन चलते हैं, इसीलिए आप भी चलिए 1701 ब्रिस वाणी के साथ।
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: वेलकम वंस अगेन टू संगीत की झनकार, रेडियो स्टेशन 1701 ब्रिस्बेन। योर होस्ट फिरोज खान, लुकिंग फॉरवर्ड टू द प्लेजर ऑफ योर कंपनी।

जयमाला के पहले नगमा भी आप सुन रहे थे फिल्म जाल से निकाली हुई आनंद राज आनंद के संगीत पर गीतकार समीर आवाज उदित नारायण फिल्म जाल। और अब आपको याद होगा माधुरी दीक्षित और संजय कपूर की फिल्म राजा से निकाली हुई उदित नारायण के साथ अलका याग्निक गीत माला की दूसरी नगमा। यह है संगीत की जानकार और आपके साथ फिरोज खान। साथ दीजिए ना।

माला खंडर के भी आप सुन रहे थे फिल्म राजा से निकाली हुई माधुरी दीक्षित और संजय कपूर की फिल्म उदित नारायण और अलका याग्निक। एक बार फिर फिल्म राजा से निकाली हुई आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत माला के अंतर्गत माधुरी दीक्षित और संजय कपूर की फिल्म राजा, उदित नारायण और एक बार फिर उसके साथ अलका याग्निक। यह है संगीत की झनकार 79.1 FM पर हर रविवार को आपने हमारा साथ देते हैं, तो हम कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं माला से, यानी कि गीत माला से। ऐसे गीत जिसको एक बार सुनकर बार बार सुनने को ही जी चाहता है, ऐसे गीत जो हिट परेड में अपनी छाप छोड़ चुके हैं, और ऐसे गीत में शामिल है ये गीत।

0: कुमार कंदर के दिव्य आप सुन रहे थे फिल्म राजा से निकली हुई उदित नारायण और अलक याग्निक।
1: ये है संगीत की झनकार 17 ओवर ब्रिस्बेन और आप सुन रहे हैं गीत माला फिरोज खान को तार।
2: संगीत संसार में हर सप्ते नई एल्बम्स जारी होते रहते हैं, ऐसे में क्या नया और क्या सुनने के काबिल है इसकी पकड़ रखना जरा मुश्किल है ना। हर एल्बम को सुनने के बाद हम चुन चुन कर बेहतरीन गाने ही बजाते हैं। जी हाँ, चुन चुन कर बेहतरीन ही गाने बजाते हैं गीतमाला में। गीतमाला में ऐसे गीत जो हिट परेड में अपनी छाप छोड़ चुके हैं, हिट्स ऑफ 90s और रीसेंट पास्ट हिट्स, और जिसको जारी रखते हुए इस बार हम आपके लिए पेश करते हैं फिल्म गुनाह से निकाली हुई। आनंद राज आनंद संगीतकार और गीतकार आनंद बख्शी, रूप कुमार राठौर के साथ सबरी ब्रदर्स। जी हाँ, सबरी ब्रदर्स बहुत ही खूबी से इस गाने को अदा किया है। संगीत की जानकारी पर गीत माला के अंतर्गत और आपका साथ

फिल्म गुनाह से निकाली हुई। रूप कुमार राठौर के साथ सबरी ब्रदर्स आनंद राज आनंद के संगीत पर और गीतकार आनंद बख्शी। और अब आपको याद होगा अजय देवगन, अक्षय खन्ना और उर्मिला मातोंडकर की फिल्म दीवानगी। दीवानगी से निकाली हुई उदित नारायण के साथ कविता कृष्णमूर्ति।

ब्यूटीफुल लाइन बाय सलीम बिनोरी गीतकार संगीतकार इस्माइल दरबार फिल्म दीवानगी से निकाली हुई अजय देवगन अक्षय कुमार की अक्षय खन्ना की फिल्म दीवानगी उदित नारायण के साथ कविता कृष्णा मूर्ति यह है संगीत की शंकर और आप सुनते हैं गीतमाला ऐसे गीत जिसको एक बार सुनकर बार बार सुनने को जी चाहता है हम है प्यार में ये एक्चुअली फिल्म का नाम है ये हम है प्यार में निषाद वाइदैया और युगेश और सोनू निगम साथ में किशोर मथुराऊ अनयूजुअल नेम बट वेरी यूजुअल सॉन्ग संगीत की जानकार पर गीत मारा के

0: हम हैं प्यार में, सोनू निगम के साथ योगेश। यह है रेडियो रिजवानी 1701 और यह है संगीत की झनकार।
1: Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Rizwani.
2: Hi, this is Feroz Khan and presenting on Radio Rizwani.
3: चौबीसों घंटा आपका साथ देता है रेडियो रिजवानी, द इंडियन रिदम फ्रॉम डाउन अंडर। रेडियो रिजवानी।
4: गाने तो गाने होते हैं, चाहे नए हो या पुराने, मगर कुछ ऐसे गीत होते हैं जो दिलों को छू लेते हैं। ऐसे ही नगमे हम शामिल करते हैं गीत माला में।

गीतमाला के अंतर्गत भी आप सुन रहे थे फिल्म हमारा दिल आपके पास है, अनिल कपूर और ऐश्वर्या राय की फिल्म हमारा दिल आपके पास है। संजीव दर्शन, संगीतकार गीतकार जावेद अख्तर। और अब शामिल करते हैं फिल्म तुम बिन, निखिल विनय, संगीतकार गीतकार फयाज अनवर। संगीत की जानकार पर आपका साथ फिरोज खान।

0: निखिल विनय, संगीतकार गीतकार फयाज अनवर, फिल्म तुम बिन, गीतमाला के अंतर्गत संगीत की झिंकार में 1701 ब्रिस्बेन।
1: I'm Padma and you're listening to Hits of the 90s and recent past hits with your host Feroz Khan.

0: हर रविवार की सुबह 10 से लेकर 12:30 बजे तक आपके साथ फिरोज खान संगीत की जानकार, जिसमें हम पेश करते हैं द गोल्डन ईयर्स ऑफ बॉलीवुड, 50s, 60s और 70s से निकाली हुई चुने हुए संगीत, एंड द अदर गोल्डन ईयर ऑफ बॉलीवुड दैट्स हिट्स ऑफ 90s. Every Sunday morning from 10 to 12:30 p.m. Make it a date. Golden Years of Bollywood. Hits of 50s, 60s, 70s and hits of 90s.
1: Radio Sangeet ki jankar. Manoranjan, Sanskriti aur Samachar.
2: Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Briswani.
0: Hi, this is Feroz Khan and presenting on Radio Brisbane.
3: चौबीसों घंटा आपका साथ देता है रेडियो ब्रिजवानी, द इंडियन रिदम फ्रॉम डाउन अंडर, रेडियो ब्रिजवानी.
0: ये है संगीत की जानकार 79.1 ब्रिजबन पर, आपके साथ फिरोज खान. और संगीत की जानकार पर हमारे स्टूडियो में करीबन 10 मिनट बाकी हैं 12:30 बजने में. और अब आखिरी हिट्स ऑफ 90s को पेश करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि 12:30 बजे से रोहित सिंह और सू will be here in the studios as usual. Har sapte ki tarah 12:30 baje se lekar 5 baje tak our telephone line 3279 here on 79.1 Brisbane 3279-1701 will be open. Roy and Sue always here from 12:30 to 5 p.m. every Sunday to receive your calls, dedication, cheerio or whatever. You must call them and give a request. They're here eagerly waiting for your call 3279-1701 is Sangeet ke baad. Aapko yaad rahe, Sue and Roy will listen to you because you listen to them.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दो।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ताँ जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: Good afternoon, listeners. You're listening Radio Vishwani on 17.1 kilohertz same band from our studios from 17 Mars Rocks. It's 12:30 in our studios now.
1: रेडियो 1701 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701।

दोस्तों, शायद आप रॉय के इंतजार में हैं। एक बार फिर आज रॉय हमारे स्टूडियोज में नहीं है, तो अभी से लेकर ठीक शायद 4 बजे तक आपका हमारे साथ होगा इस प्यारा से सफर पर, यानी संडे शाम सफर। अब सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्वानी 17.1 किलोहर्ट्ज़ पर, हमारे स्टूडियोज 17 माइल्स रॉक्स ब्रिस्बेन से आपके साथ सो।

मुझे पता है बहुत से लोग, सारे लोग जो यहाँ पर है, इट्स अ वेरी लॉन्ग वीकेंड एंड अ वेरी रिलैक्स रिलैक्सिंग वीकेंड है. कुछ लोग शायद कहीं ड्राइव पर चले गए हैं, कुछ लोग पिकनिक पर चले गए हैं, कुछ लोग शायद कहीं और हॉलीडेज पर चले गए हैं, और शायद आज आप हमारे ब्रिस्बेन में मेहमान हैं. आप सभी का स्वागत है रेडियो ब्रिस्बानी पर. हाँ, अगर आज आपकी शादी की सालगिरह है, जन्मदिन है, कुछ भी खुशियाँ आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत सारी सी बधाइयाँ हमारी तरफ से आप सभी को. हमारे स्टूडियो डायरेक्ट लाइन नंबर है 3279-1701, नहीं तो आप हमें मोबाइल पर SMS कर सकते हैं. वीकेंड क्या बाहर लेकर आती है दोस्तों? वीकेंड क्या है पता है? हवा का एक झोंका है वीकेंड, एक पल भर में उड़ जाएगा. जिंदगी बर्बाद करने का, दो दिन बाद मंडे फिर से आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो मंडे के बाद ही ट्यूसडे आता है. फिर लॉन्ग वीकेंड है ना, एंजॉय. संडे का मूड क्या है पता है? संडे का मूड है मस्ताना, ना कोई टेंशन ना कोई बहाना. और आज बस हंसी के साथ जीना है और खुशियों को गले लगाना है.

संडे का दिन एक तोहफा है दोस्तों, हर खुशियों का एक पल का मौका भी है। छोड़ दो आज सारी उलझने को, ये दिन आज बस मुस्कुराने के लिए बना है। हैप्पी संडे। तो इसीलिए अगर ये दिन मुस्कुराने के लिए बना है तो प्यारा सा गीत मुन्नी बेगम के वास्ते सुनते हैं।

0: दोस्तों, मुन्नी बेगम की आवाज में ब्यूटीफुल कवाली भजन गजल आपने सुना। और बात सही है, मुस्कुराने में कुछ किसी का नहीं जाता। अगर आप मुस्कुराते चेहरे किसी को देखते हो तो आप किसी और का दिल भी जीत सकते हो। एक बार किसी दुखिया को आप देखते हो तो मुस्कुरा देते हो तो उनका दिल भी खुश हो जाता है ना। मुस्कुराने के लिए वजह भी तुम हो।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
0: तो चलते हैं दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं कुछ फरमाइशी प्रोग्राम। लेकिन आज पहली जो फरमाइशी है वो भी एक कवाली है, बहुत प्यारे से कवाली है। शायद आप बहुत दिनों बाद सुनने जा रहे हैं, शायद आपने सुना भी होगा जल्द में, मुझे पता ही नहीं। रेडियो ब्रिसवानी पर तो आज शायद बहुत दिनों बाद आप मेरे प्रोग्राम पर सुनने जा रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा अपने प्रोग्राम पर जबकि जैसा मेरे पास समय होता है, लेकिन आज थोड़ा सा लंबा समय है इसलिए आज मेरे प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा ही वैरायटीज आप सुन सकते हैं। चलते हैं फॉरेस्ट लेक की ओर। हमारे साथ शामिल हैं वहाँ से हफीज अली खान और जबीदा खान। आप दोनों के लिए अगला ब्यूटीफुल कवाली। तो हमें तो लूट लिया मिल के उसने वालों ने, काले काले बालों ने भी, वो भी गोरे गोरे गालों ने। ए है शाम का सफर, रेडियो ब्रिसवानी।

आपने सुना इस्माइल आजाद कव्वाल की आवाज में ब्यूटीफुल प्यारा सा कव्वाली। और दोस्तों फरमाइश थी हमारे पास यानी कि हमारा साथ दे रहे हैं फोरेस्ट लेक से हफीज अली खान और जबीदा खान। चलते हैं लास वेगास की और दोस्तों हमारा प्रोग्राम वहां सुन रहे दिनेश सोलंकी और दक्ष सोलंकी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। और जैसे पता है आप गुजराती वालों के लिए नवरात्रि बहुत ही बड़े दिन होती है ना, तो चलते हैं। आप सभी को पता है कि माता रानी भी आने वाली है, तो दिनेश और दक्ष सोलंकी आप दोनों के लिए माता रानी पर एक प्यारा सा भजन सुनते हैं।

472 माता रानी का भजन आपने सुना। हमारे साथ शामिल हो गए थे दक्ष सोलंकी, दिनेश सोलंकी फ्रॉम लास वेगास। आप सुन रहे हैं रेडियो विजवानी 79.1 किलोहर्ट्ज़ पर और हमारे स्टूडियोज में, जी हाँ, मेलबर्न और सिडनी से हमारे पास मैसेज है। दे आर वन आवर हेड ऑफ अस। अगर आप हमारे पास, हमारा यहाँ पर 12:30 प्रोग्राम शुरू हुआ तो वहाँ पर शायद 1:30 होगा, तो वी विल कीप इन माइंड। दोस्तों, अगर आप ट्यून इन करना चाहते हैं तो हमारा 2:30 प्रोग्राम जो है आपका 3:30 होगा मेलबर्न एंड सिडनी, और अगर 12:30 है तो आपका 1:30 होगा। आप सुन रहे हैं रेडियो विजवानी, आपकी अपनी पहचान है ना। होप एवरीवन इज एंजॉयिंग अ ब्यूटीफुल लॉन्ग वीकेंड आउट देयर। चलते हैं मेलबर्न की ओर। दोस्तों, मेलबर्न से हमारे साथ जुड़े हैं एल्फ्रेड और किरण प्रसाद। आप दोनों के लिए भी बहुत प्यारा सा माता रानी का नवरात्रि भजन सुनते हैं।

0: किसी कारण ये गीत सही नहीं आ रही है, हम कोशिश करेंगे आपके लिए कोई अलग सा गीत लेकर आने को। आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी, आपकी अपनी पहचान।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रेज सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, ब्रेज सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

माइश करना चाहते हैं तो यू मोस्ट वेलकम. आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी, आपकी अपनी पहचान. और 9 मिनट हो गए हैं हमारे स्टूडियोज में 1 बजकर है शाम का सफर. हमारे पास फरमाइशी अगला गीत के लिए हमेशा की तरह हम चलते हैं सैक्रामेंटो USA में, जहाँ हमें सुन रहे विजय और कामनी. आप दोनों की फरमाइश पर सुनते हैं अगला गीत.

बहुत प्यारे से माता रानी का भजन। दोस्तों आपको पता है कि 11 से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो अगर आप नवरात्रि का गीत भी हमारे प्रोग्राम पर सुनना चाहते हैं, किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं।

सलाम है रखी आवाज में इस ब्यूटीफुल गजल को आपने सुना। फरमाइश आई थी हमारे पास वहाँ सैक्रामेंटो यूएसए से विजयन और कामनी की ओर से, यह शाम को सुपर रेडियो बिस्पानी आईएम। दोस्तों 15 मिनट हो गए हैं हमारे स्टूडियोज में, यानी कि 1:15 बज चुके हैं हमारे स्टूडियोज में 1:00, और हमारा आपका साथ है आज 4 बजे तक। शायद आप रोय का इंतज़ार में हैं, लेकिन आज एक बार फिर रोय हमारे स्टूडियोज़ में नहीं है, तो यही सोच लीजिएगा। अगर आप रोय के लिसन रहे तो रोय जैसा प्रोग्राम आपको चाहिए तो आप मुझे उसी सॉन्ग्स का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल आप अपने भी रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं, लेकिन हम चलते हैं दोस्तों कैडरन पार्क की ओर, जहाँ में सुन रहे जोनी और सविता। हमेशा क्या बात होती है ना, लॉन्ग हॉलीडे है यानी कि लॉन्ग वीकेंड है, तो सविता जी जोनी जी क्या आपसे यही कहना चाहते हैं कि चलते हैं क्लब?

0: संगीत को फरमाइश करने वाले थे जोनी और सविता जो हमें सुन रहे हैं केड्रोन पार्क में। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी 1701।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निःशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
3: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
2: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
3: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
0: दोस्तों सफर करते हैं सिडनी की ओर, ग्रीन एकर सिडनी, जहां हमें सुन रहे रचिन और मालती प्रसाद। आप दोनों के लिए पेश है अगला गीत लेटेस्ट एल्बम से।

ब्यूटीफुल सॉन्ग इसे मैंने लिया था लेटेस्ट एल्बम से। हमारे साथ शामिल हो गए थे ग्रीन एका सिडनी से रजिन और मालती प्रसाद। ए शाम का सफर दोस्तों रेडियो बसवानी एम। और अगर आपने अभी ट्यून इन किया है, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टूडियो 17 मास रॉक्स ब्रिस्बेन से। ब्रिस्बेन टाइम देखा जाए तो इस अबाउट 1:30 ना स्टूडियोज। चलते हैं अगला गीत जो है, उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ए माँ पर है, माँ घर में हो तो छोटा सा घर भी जन्नत लगता है दोस्तों, और माँ ना हो तो बड़ा महल भी सूना लगता है। माँ डांट दे तो हम कहते हैं हर बार पटोकती हो, पर वही माँ जब पास ना रहे तो उसकी आवाज़ सुनने को रू तरसती है। बात सही है ना। कुछ लोग माँ के हाथ का खाना खाना छोड़ देते हैं और कुछ लोग सिर्फ एक बार खाना खा लेने के लिए माँ के हाथ के रो पड़ते हैं। माँ के पास दौलत नहीं है, फिर भी उसके बच्चे कभी गरीब नहीं लगते। सच तो यह है कि माँ के जाने से इंसान बड़ा नहीं होता, बस उसके अंदर एक बच्चा हमेशा के लिए खामोश हो जाता है।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
4: एक बार फिर चलते हैं दोस्तों सैक्रामेंटो USA की ओर। विजय ने जो हमेशा चटनी गीत की रिक्वेस्ट करते रहते हैं और आज भी चटनी गीत सुनना चाहते हैं, तो विजय जी आपके लिए रेडी।

माफ कीजिएगा, इस गीत को हम कोशिश करेंगे एक बार फिर लाने के लिए, किसी कारण गीत सही नहीं आ रही है, माफ कीजिएगा। थोड़ी देर में हम फिर ट्राई करेंगे इस गीत को बजाने के लिए। फिलहाल हम चलते हैं कैलिफोर्निया, यूएसए। हमारे साथ जुड़े हैं मैक्स प्रसाद। मैक्स, आपके लिए अगला गीत।

0: इस स्विस गीत में हमारे साथ शामिल हो गए थे मैक्स प्रसाद, जो हमें सुन रहे हैं कैलिफोर्निया यूएसए में।
1: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है, ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ, ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
3: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
4: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
4: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
0: तो विजयन जी, चलते हैं आपके लिए एक दूसरा। आपने कहा कि कोई अलग सा डिफरेंट वाला बजा दीजिए, तो चलते हैं आपके लिए एक लेटेस्ट चटनी गीत हमने चुना है। होप यू लाइक इट।

स्वागत। तो हमारे साथ इस गीत में शामिल हो गए थे विजयन फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए। विजयन जी, थैंक यू सो मच फॉर लविंग द सॉन्ग। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी। पौने दो बज चुके हैं हमारे स्टूडियोज के घड़ी में। ए है शाम का सफर रेडियो विस्वानी एम एंड आई होप एवरीवन इज एंजॉयिंग अ ब्यूटीफुल लॉन्ग वीकेंड आउट देयर। हम चलते हैं आज फील की ओर और हमारे साथ शामिल है वह हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं अनवर और शेरुल।

बहुत प्यारे से गीत वॉज रिक्वेस्टेड बाय माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स अनवर और शेरुल जो हमें सुन रहे हैं आज फिल्म में. बट हम अनवर और शेरुल के लिए आई लाइक टू से वेरी प्राउडली कि अनवर और शेरुल जो है मेरे सबसे पुराने दोस्त, ब्रिस्बेन के मेरे सबसे पहले दोस्त थे और आज भी हमारी उनकी दोस्ती उसी तरह है. चलते हैं पाकिस्तान की ओर दोस्तों, हम बढ़ते हैं. आशिक और आसमा हमारे साथ हो लिए हैं आप दोनों के लिए अगला गीत.

0: दोस्तों जरूर हमारे साथ शामिल हो गए थे ने हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं पार्किंसन में आशिक और आसमा।
1: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
2: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज्ड बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 04302280009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
3: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
4: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
3: ऐसा क्या खास है वहाँ?
4: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
3: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
4: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au. 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818. दैट्स 3804-3818.
0: रेडियो विश्वानी पर दोस्तों ठीक 2 बज चुके हैं।

0: सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
0: बिल्कुल, ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओमजोर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omzorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए, इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार आई एम सो वरीड, आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
2: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
5: तो ओमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
4: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
5: अरे, ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
4: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
5: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
4: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
5: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448-381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
6: चले हैं दोस्तों, अगला गीत की फरमाइश हमारे पास आई है थ्री सिस्टर्स, और उनमें से है आशा और सुजी फ्रॉम सिडनी एंड प्रवीणा फ्रॉम ऑकलैंड न्यूजीलैंड, और आप सभी की फरमाइश पर पेश करते हैं अगला गजल अनुराधा पौडवाल की आवाज में। आशा एंड सुजी फ्रॉम सिडनी एंड प्रवीणा फ्रॉम ऑकलैंड न्यूजीलैंड।

0: सुना अनुराधा पौडवाल की आवाज का गजल फरमाइश आई थी हमारे पास सिडनी से, जहां मैं सुन रही है आशा और सूजी और साथ में प्रवीणा फ्रॉम ऑकलैंड न्यूजीलैंड।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
4: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
5: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
4: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
5: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
4: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
5: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
6: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
7: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है, और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
0: इसी के साथ साथ दोस्तों, हमारे स्टूडियोज में ब्रिस्बेन टाइम 2:15 बज चुके हैं, और ये शाम का सफर है रेडियो ब्रिस्बेन AM आपके साथ है। और शामिल हो गए हमारे साथ, हम चलते हैं सिडनी की ओर। बैंक्स टाउन सिडनी में हमें सुन रहे सनी और अमीजा, आप दोनों के लिए अगला गीत।

0: सर दोस्तों इस गीत में हमारे साथ शामिल हो गए थे, यानी हम हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं वहां पर बैंकस्टाउन सिडनी में सनी और रमीजा।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
0: आप सभी को पता है आज क्या है? जी हाँ, आज क्या है? आज यहाँ पर संडे है जी।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote, code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar. और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
11: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.
12: तो चलते हैं अगला गीत के लिए. हमारे पास फरमाइश है, हम सिडनी की ओर बढ़ते हैं. दोस्तों हमेशा इस गीत की रिक्वेस्ट हमारे पास ब्रिस्बेन से आती है, लेकिन आज हमें ब्रिस्बेन में नहीं, सिडनी में हॉलीडेज पर सुन रहे हमें गंगा और गीता. तो चलते हैं आप दोनों के लिए अगला गीत सुनते हैं, गंगा और गीता. कौन सा गीत है खुद ही सुनते हैं.

0: बात पर सगी तू चीज बड़ी है मस्त मस्त शामिल हुए हमारे साथ गंगा और गीता। आज हमें ब्रिस्बेन में नहीं लेकिन सिडनी में हॉलीडेज पर हमें सुन रहे हैं। नाइस हॉलीडे गंगा और गीता।
1: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
3: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
4: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
5: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, CK बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
4: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
5: बिल्कुल, ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड ऑल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omzorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
6: चल रहे

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
9: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani.
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
11: आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी। दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारे स्टूडियोज में बस शायद 20 मिनट रह गए हैं 3 बजने में, यानी 3:15 बजने वाले हैं। हम चलते हैं मेनली वेस्ट की ओर। फरमाइश है हमारे पास मेनली वेस्ट से लक्ष्मी की ओर से आपके लिए अगला गीत। लक्ष्मी जी, शाम का सफर रेडियो ब्रिसवानी है।

0: गीत में शामिल हो गई थी हमारे साथ लक्ष्मी, जो हमें सुन रही है मेली वेस्ट में।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
4: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
3: गो फॉर द बेस्ट विरे, अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ, ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस, ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
4: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: हिट को मैंने लिया था दोस्तों लेटेस्ट चटनी मिक्स एल्बम से।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
2: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
2: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
0: चलते हैं शिकागो की ओर दोस्तों। फरमाइश है हमारे पास शिकागो से अमला सिंह की ओर से। आप सुनना चाहते हैं लता जी की आवाज का अगला गीत।

0: लता मंगेशकर की आवाज का गीत की फरमाइश है थी हमारे पास शिकागो से अमला सिंह की ओर से।
1: आर यू रेडी टू स्टॉप रेंटिंग एंड थिंकिंग अबाउट ओनिंग वन और मे बी एन इन्वेस्टर लुकिंग टू इन्वेस्ट? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: And you are listening to Radio Briswani.
4: Hi guys, I'm Madhvit from the Meet Brothers. And you are listening to Radio Briswani.
5: Hi, this is Salman Khan. And you are listening to Radio Briswani.
6: Hi, this is Deepika Padukone. And you are listening to Radio Briswani.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
0: तो चलते हैं दोस्तों एशग्रोव एवेन्यू की ओर जहां हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं कौन जी हमेशा की तरह एशग्रोव एवेन्यू में रजीना चौधरी आनंद चौधरी आप दोनों के लिए पेश है अगला गीत।

0: सो इस गीत में हमारे साथ शामिल हो गए थे शिक्रो वेब न्यूज से रजीना चौधरी, आनंद चौधरी, रेडियो विश्वानी। आइए आप सुन रहे, ठीक 3 बज चुके हैं ब्रिस्बेन टाइम हमारे स्टूडियोज में।
1: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
2: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
3: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
2: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
4: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
5: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
4: ऐसा क्या खास है वहाँ?
5: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
4: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
5: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
6: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 04159526600 04159526600।
7: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
8: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, CK बिरला, आर्टिमस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
7: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
8: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी, आपकी अपनी पहचान है शाम का सफर। दोस्तों, न चादर बड़ी कीजिए, न खामोशियों को दफन कीजिए। 4 दिन की तो जिंदगी है ना, बस चैन की बस।
8: 4483813600। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी, आपकी अपनी पहचान है शाम का सफर। दोस्तों, ना चादर बड़ी कीजिए, ना खामोशियों को दफन कीजिए। चार दिन की तो जिंदगी है ना, बस चैन की बसर कीजिए, क्या बड़ा बात है। ना

और ना झूठा वादा भी किसी से कीजिए। सबसे बड़ी बात है अगर आप किसी से झूठा वादा करते हैं, कुछ फुर्सत के पल निकालिए, कभी खुद से भी मिला कीजिए। आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com, the one stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
5: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: देखिए दोस्तों, समय की ओर देखा जाए बस 19 मिनट हो गए हैं, 3:00 हमारे स्टूडियोज में है शाम का सुपर रेडियो विस्वानी आयाम। आप सुन रहे हैं हमारे स्टूडियोज यहाँ 17 माइल्स रॉक्स ब्रिस्बेन से। आज आपके साथ है सु और सफर कर रही है इस वक्त कौन जी। हम चलते ऑल द वे सैक्रामेंटो USA में। ड्राइव पर है ललिता गौतम जो अपने पूजा से लौटकर अपने घर के ओर सफर पर है और गाड़ी में हमारा प्रोग्राम सुन रही। ललिता जी हैव अ नाइस ड्राइव। और चलते हैं आपकी फरमाइश पर, सुनते हैं अगला गीत। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, फिल्म ताजमहल।

0: मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम ताजमहल और ब्यूटीफुल सॉन्ग जिसकी फरमाइश करने वाली थी ललिता गौतम जो हमारे साथ सफर पर है फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
0: फरमाइश है ये दोस्तों हमारे पास फॉरेस्ट लेक से जबीदा खान की ओर से, और आप सुनना चाहती है लेटेस्ट वर्जन का नीले गगन की तले। सुनते हैं कैसे लग रही है आपको।

0: लेटेस्ट वर्जन पर आपने सुना नीले गगन की तले, जिसे फरमाइश करने वाली थी ज़बीदा खान फ्रॉम फॉरेस्ट लाइफ।
1: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
2: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.

0: हमारा सबसे बड़ा नसीब रहा।
1: इस गीत को मैंने लिया था, इस कव्वाली गीत को मैंने लिया था यूपी बिहार एल्बम से। आप सुन रहे हैं रेडियो विजपानी, आपकी अपनी पहचान।
2: क्वींसलैंड विच हर साल जंगला विच अग लगदी है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
3: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
4: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
4: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
6: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
5: अरे वाह, इनका पता बताना।
6: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlum and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business, built on trust.
2: अच्छा तो दोस्तों, एक बार फिर सैक्रामेंटो USA की ओर, और इस बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोनों, साथ में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं हमेशा की तरह कामिनी नारायण, और साथ में है ललिता गौतम। आप दोनों की पसंद पर सुनते हैं अगला गीत।

0: फर्स्ट सॉन्ग फिल्म पाकिस्तान से लेवा गीत लेटेस्ट वर्जन पर आपने सुना, जिसे फरमाइश किया था ललिता गौतम और कामनी नारायण, जो हमें सुन रहे हैं सैक्रामेंटो यूएसए में। दोस्तों इसी के साथ साथ 4:15 बज चुके हैं हमारे स्टूडियोज में।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
0: चलते हैं एक ऐसे गीत सुनते हैं, चटनी मिक्स पर है चलो जहाजी। देखिए आपको ये गीत कैसे लग रही है, थोड़ा सा कुछ गिरमिट पर रिलेटेड है।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: चलते हैं दोस्तों जिम बुम्बा की ओर। जा मैं सुन रही सोनिया। हाय सोनिया, सबसे पहले आई वुड लाइक टू विश सोनिया हैप्पी बिलेटेड बर्थडे फॉर यस्टरडे। कल सोनिया ने अपनी जन्मदिन मनाई अपने बहुत ही क्लोज रिश्तेदारों के साथ। और वैसे कुछ
0: और वेबसाइट डब्ल्यू

आपकी बहन है सुजी नारायण फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए, फिजी से आपके भाई, जितने भी रिश्तेदार है सभी की ओर से विशिंग यू आर वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सुजी. सॉरी सोनिया फ्रॉम जिम्बुम्बा, और सोनिया थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी एज वेल. जितने भी लोग आपके दोस्त हैं, परिवार है, जो लोग भी आज सुन रहे हैं, सभी की तरफ से वी विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी बिलेटेड बर्थडे. सोनिया फ्रॉम जिम्बुम्बा, आपके लिए पेश है अनदर अलग अगला गीत. सॉरी

0: फिर वो सॉन्ग दोस्तों इसे मैंने लिया था पहाड़ी एल्बम से, खास करके हमारे साथ शामिल है हमारा प्रोग्राम सुन रही है जिम्बुम्बा में सोनिया, और सोनिया ने कल अपनी जन्मदिन मनाया। हैप्पी बिलेटेड सोनिया वंस अगेन, सभी की ओर से, दोस्तों की ओर से, रिश्तेदारी की ओर से, आपकी बहन सुजी नारायण से, क्रोमेंटो से, यहाँ जोनी सविता फ्रॉम किरण पार्क से याद कर रहे हैं आपको, भाई नंद कुमार इन परिवार फ्रॉम लॉग इन सेंट्रल राइडर वेजवानी टीम की ओर से विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी बिलेटेड बर्थडे सोनिया।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: और दोस्तों इसी के साथ साथ 18 मिनट हो गए हैं हमारे स्टूडियोज में 4 बजकर, चलते हैं आखिरी गीत की बारी आ गई है। और आखिरी गीत जो है आप सभी के लिए हम पेश कर रहे हैं, जिन्होंने आज हमारा साथ दिया।

दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारा चलने का समय हुआ। साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होपफुली रॉयल विल बी बैक नेक्स्ट वीकेंड। लेकिन हाँ, आप जो भी कर रहे हैं इस लॉन्ग वीकेंड हियर, तो एंजॉय योर लॉन्ग वीकेंड। और अगर आप हमारे ब्रिस्बेन में मेहमान हैं, तो आप एंजॉय कीजिए अपने रिश्तेदारों के साथ। अगर आप कहीं चले गए हैं, दूर चले गए हैं कहीं पर हॉलीडेज पर, 3 डेज हॉलीडेज पर, तो भी आप एंजॉय कीजिए। हमारी अगली मुलाकात है नेक्स्ट वीकेंड, नेक्स्ट सैटरडे को, याद रहे ब्रिस्बेन टाइम नेक्स्ट सैटरडे। और वैसे भी मुझे, मेरे पास कुछ मैसेजेस आए हैं, सिडनी और मेलबर्न हमसे 1 घंटा आगे हो गए हैं, तो याद रखिएगा हमारा समय 1 आवर वी आर बिहाइंड यू। और USA आप तो बहुत दूर है हमसे, लेकिन हाँ, हम तो आपको रिमाइंड करते रहते हैं। चलते चलते यही कहना चाहते हैं, नमस्ते, खुदा हाफिज, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस लॉन्ग वीकेंड, एंड USA यू हैव अ नाइस वीकेंड टू। नमस्ते, खुदा हाफिज, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय।

क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: मैडम, आई एम योर ओनली मैडम।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है.

लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
4: मैं निकला

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानूं लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानूं फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: खुश रहा किस्सा।
1: कहते हैं हर इंसान के दिल में कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें सुनने के लिए किसी खास वजह की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कोई धुन पुराने दिनों में ले जाती है, तो कभी कोई गीत किसी खास इंसान की याद दिला देता है, और कभी किसी की फरमाइश में हमें अपना ही कोई किस्सा सुनाई दे जाता है। तो आज एक बार फिर से उन्हीं किस्सों और उन्हीं कहानियों को आपके लिए हम लेकर आए हैं फरमाइशी गीतों के सफर में। जी हाँ, वो सफर जहाँ आपके सॉन्ग रिक्वेस्ट लेकर हम वही गाने जो आपने रिक्वेस्ट किए हैं वो आपके लिए प्ले करते हैं। तो आप भी इस प्रोग्राम के लिए अपनी रिक्वेस्ट हम तक पहुँचा सकते हैं और अपने संडे को बहुत ही खास और स्पेशल बना सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर फरमाइशी गीतों का सिलसिला। आपके साथ सताक्षी है और पूरे दो घंटे इसी सफर में रहेगी।

आज की जो पहली सॉन्ग रिक्वेस्ट हमें आई है वो है मीतल की, और आपने हमें लिख भेजा है ब्रिस्बेन से। आप कहते हैं कि फिताक्षी कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि आंखें बंद करते ही उन गानों का पूरा पिक्चराइजेशन आंखों के सामने आ जाता है, और यही खूबसूरती होती है कुछ बहुत ही खूबसूरत गानों की। मैं ऐसे ही गानों में 90s के दौर का एक गाना सुनना चाहती हूँ, जब गाने सिर्फ गाने नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का बैकग्राउंड म्यूजिक हुआ करते थे। सो फिल्म क्रिमिनल से प्लीज मेरे लिए प्ले कर दीजिए तुम मिले दिल खिले। यस भाई, मीतल तुम मिले दिल खिले 90s का बहुत ही खूबसूरत और प्यारा गाना है, फिल्म क्रिमिनल से, जो रिलीज हुई थी 1995 में। इस गाने को अपनी आवाज दी है कुमार सानू, अलका याग्निक और के एस चित्रा ने, म्यूजिक डायरेक्टर MM किरावनी, और इस गाने को लिखा है इंदिवर ने। तो चलिए फिल्म क्रिमिनल से आपके लिए प्ले करते हैं तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। सुनते रहिए हमारे साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीत।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di intricacies nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: आपकी फरमाइशों को इस वक्त हम पहुंचा रहे हैं आप तक। फरमाइशी गीत सुन रहे हैं आप रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM पर। अगर आप भी हमसे जुड़कर अपनी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं या किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे हमारे फेसबुक पेज और वेबसाइट पर। आपकी पसंद के गाने हम जरूर प्ले करेंगे। फिलहाल एक अगले ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा और सुनते रहिए फरमाइशी गीत रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM पर।

0: बाकी सब गंगा।
1: वेलकम बैक फरमाइशी गीतों में सदाक्षी के साथ हैं आप एक बार फिर से। अच्छा, 90s के म्यूजिक को सुनते ही न जाने क्यों लगता है कि वक्त थोड़ा पीछे चला गया। वो कैसेट, वो रेडियो और किसी पसंदीदा गाने के आने का इंतजार। भाई फरमाइशी गीत जब हम सुना करते थे और हमारे फेवरेट गाने प्ले होने का हम इंतजार किया करते थे, वो दौर भी बड़ा ही लाजवाब था। आज देखा जाए तो सब कुछ है, लेकिन उस इंतजार की मिठास कहीं पीछे छूट गई है। और अगर आप इस वक्त उस मिठास को थोड़ा सा इस सफर में भरना चाहते हैं, तो अपने गाने को हम तक पहुंचाते रहिए। वैसे हमें अगली फरमाइश मिल गई है और ये है सौरभ, और आपने हमें लिखा है डेल्टा पीसी से, और आपने फरमाइश की है जगजीत सिंह के गाने की, और आप सुनना चाहते हैं फिल्म दुश्मन से चिट्ठी ना कोई संदेश। यार ये गाना ना बहुत ही खूबसूरत है, और ये गाना उनके लिए है जिन्होंने किसी भी अपने को याद तो बहुत किया, मगर वो बात जो है वो कभी बनी नहीं या बात अधूरी रह गई। चिट्ठी ना कोई संदेश, किसी ना किसी के जाने का गम ये गाना दे ही जाता है। तो आज इस गाने को प्ले तो करेंगे भाई, लेकिन बहुत लोगों की आंखें नम होने वाली हम जानते हैं। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्वानी, हमारे साथ एंजॉय करते रहिए फरमाइशी।
2: सुनिए सद्गुरु डिस्कोर्सेस कारवा 2.0 पर।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service।
2: आपकी फरमाइशों को सताक्षी के साथ एंजॉय कर रहे हैं आप रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर फरमाइशी गीतों के खूबसूरत और बेहतरीन सफर में। जी हाँ, वो फरमाइशें जो आपके दिलों में बसी हुई हैं, वो गाने जिन्हें आप एंजॉय करना चाहते हैं, वो गाने जिन्हें आप गुनगुनाना चाहते हैं या फिर किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं रेडियो ब्रिस्वानी के फेसबुक पेज या फिर वेबसाइट पर। आइए एक अगला गाना भी मेरी तरफ से सुनिए एंड कहीं में जाइएगा, एंजॉय करते रहिए। फरमाइशी गीत सताक्षी आपके साथ है।

सुचित्रा का है हमारे पास अगला मेल और आपने लिखा है पुणे से इस वक्त हमें। और आप लिखते हैं कि सताक्षी, जब आपका फेवरेट गाना कहीं पर प्ले हो जाता है तो ऐसा लगता है कि यार ये वक्त मेरा है। भाई मेरा वक्त तो सताक्षी तभी होता है जब मैं अपना फेवरेट गाना किसी रेडियो स्टेशन पर या फिर कैब में या फिर किसी के घर के बाहर भी प्ले होते हुए सुन लेती हूँ। और जब मैं अपने फेवरेट गानों के बारे में सोचती हूँ ना, तो मुझे 90s और 2000 का वो खूबसूरत दौर याद आता है जब प्राइवेट एल्बम्स का जमाना था और उस वक्त रन कर रहे थे आर्यंस के गाने। आर्यंस के सभी गाने बड़े ही खूबसूरत थे और आंखों में तेरा ही चेहरा, ये गाना पर्सनली मेरा बहुत ही फेवरेट है। सो प्लीज हो सके तो इस गाने को मेरे लिए प्ले कर दीजिए। ये गाना मैं अपने सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहती हूँ और हम सब ने मिलकर इस गाने पर बहुत सारी मस्ती की है कॉलेज में, बहुत इंजॉय किया है और आज हम सब उम्र के एक अलग पड़ाव पर पहुंच गए हैं, लेकिन हम सब अभी भी टच में हैं और ये गाने जब हम याद करते हैं तो हम बहुत मस्ती करते हैं, फिर से वही दौर याद आता है। सो प्लीज हम सब के लिए ये गाना जरूर प्ले कीजिएगा। तो भाई आपने रिक्वेस्ट की है तो प्ले जरूर करेंगे हम आपके लिए आर्यन से आंखों में तेरा ही चेहरा। आप जानते हैं शाहिद कपूर जी हाँ इस गाने में नजर आए थे और बड़े ही अलग से आज के शाहिद को और उस वक्त के शाहिद को आप देखेंगे तो एकदम अलग सा शाहिद का लुक नजर आता है आपको, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह से वो वही 18-19 साल का बच्चा जो इस गाने में है, बड़े ही क्यूट लगते हैं वो। तो चलिए फिलहाल इस गाने को सुनिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए। आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्थानी पर फरमाइशी गीत, आपके साथ सताक्षी है।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: बहुत ही खूबसूरत गाने जो है वो इस वक्त फरमाइशी गीतों में हम प्ले कर रहे हैं. आंखों में तेरा ही चेहरा, थोड़ी देर पहले हमने इसी गाने को सुना. वैसे एक बात बताइए कि आपके पास भी कोई ऐसा एल्बम है जिसे सुनते ही आपको अपना कॉलेज, आपको अपना स्कूल या कोई खास दोस्त याद आ जाता हो? क्योंकि कुछ गाने हमारी उम्र के साथ पुराने नहीं होते बल्कि हमारी यादों के साथ और भी खास होते जाते हैं. हाँ, तो अगली फरमाइश को लेने से पहले एक अच्छे से गाने को फिलहाल और आइए सुनते हैं यहाँ पर और अपनी यादों को और भी खास बनाते हैं. स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीत.

बोंदिता का है हमारे पास अगला मेल और आपने हमें लिखा है मेलबर्न से। और आपने लिखी कि सताक्षी हाय, फरमाइशी गीत मैं काफी टाइम से हर संडे सुनती हूँ और कभी भी मिस नहीं करती। ये शो मेरा बहुत ही फेवरेट है और मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों मिलकर इस शो को बहुत इंजॉय करते हैं। तो आज हम भी अपनी ये रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। हम दोनों ने एक गाना सेलेक्ट किया है आज के फरमाइशी गीतों के लिए, जो है फिल्म बॉम्बे से। तो प्लीज प्ले कीजिए अगर आपके पास हो, तू ही रे तू ही रे। बहुत बहुत खूबसूरत गाना है, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, राइट। बहुत ही प्यारा गाना आपने पसंद किया है भाई। और ये गाना यहाँ ना प्ले हो और फरमाइश होने के बाद, ऐसा तो कैसे ही हो सकता है। हरिहरन साहब और कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज में ये गाना है, जिसके डायरेक्टर हैं एआर रहमान साहब और इस गाने को लिखा है महबूब ने। अरविंद स्वामी और मनीषा कोराला स्टेज पर हैं, तो चलिए एंजॉय कीजिए फिल्म बॉम्बे से तू ही रे और सुनते रहिए हमारे साथ फरमाइशी गीत।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Yeah, enjoy कर रहे हैं सदाक्षी के साथ रेडियो Briswani 1701 AM पर. आपकी फरमाइशों को हवा दे रहे हैं कुछ ऐसे गाने जो इस वक्त बहुत ही खास हो गए हैं और आप इन गानों के साथ कहीं खो चुके हैं, कहीं डूब चुके हैं. वैसे अगली फरमाइश किसकी है ये बताने से पहले आपको सुनवाऊंगी ये अगला ट्रैक. इसे एंजॉय कीजिए और मेरे साथ सुनते रहिए फरमाइशी गीत.

फरमाइशें आपकी इतनी सारी आ चुकी हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और मेरे स्क्रीन जो है वो फटाफट से ऊपर जाती जा रही है और आपकी फरमाइशें आती जा रही हैं। वैसे अगला जो मेल मुझे मिला है वो समीर ने भेजा है और आपने हमें लिख भेजा है इंडिया से। और समीर का कहना है कि उनकी शादी को 15 साल हो चुके हैं लेकिन आज भी जब वो 90s के गाने सुनते हैं तो उन्हें अपनी वाइफ से दोबारा प्यार हो जाता है। स्पेशली वो गाना जो सबके दिल की धड़कन हुआ करता था 90s में, फिल्म आशिकी से धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। तो समीर जी, आपकी इस खूबसूरत मोहब्बत को सलाम और अपनी वाइफ से एक बार और प्यार करने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि ये रहा आपके और आपकी बेगम साहिबा के नाम, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना हमारे रेडियो सेट पर। इंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो प्रिस्वानी 1701 FM।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
8: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.
11: भाई, फरमाइशी की तो वो सफर है जहां आप अपने दिल के कोने में झांक पाते हैं. कुछ ऐसे गाने जो आपको आपके लगते हैं, कुछ ऐसे गाने जो आपकी जिंदगी पर बेस्ड लगते हैं और उन गानों को आप गुनगुनाते भी हैं, उन पर आप जीते भी हैं और उनके साथ आप मुस्कुराते भी हैं. और ऐसे ही गाने को भी हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं फरमाइशी गीतों में. और अगर आपकी कोई फरमाइश है तो हमारे साथ जुड़िए रेडियो ब्रिसवानी के फेसबुक पेज या फिर वेबसाइट पर. एक अगले ट्रैक को आइए सुनते हैं अभी यहाँ पर. इंजॉय करते रहिए हमारे साथ फरमाइशी गीत और बने रहिए रेडियो ब्रिसवानी पर सताक्षी के साथ.

सुबह एकता की है हमारे पास अगली फरमाइश और आप लिखती हैं कि सताक्षी, फरमाइशी गीतों में आज मैं जो अपनी फरमाइश भेज रही हूँ, रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, वो बेसिकली कवाली है। बट ये कवाली वो कवाली है जो अक्सर पहले हमें टीवी पर सुनाई दे जाती थी, ऋषि कपूर साहब की फिल्म अमर अकबर एंथोनी से, पर्दा है पर्दा। कवालियों का भी भाई अपना ही एक अलग फ्लेवर होता है, एक अलग ही क्रेज होता है और एक अलग ही तरह के कवालियाँ जो है वो उनके लिरिसिस्ट गाने के बोल लिखते हैं, है ना, उस कवाली के बोल लिखते हैं। और ऐसी कवाली ही आपने पसंद की है ऋषि कपूर और नीतू सिंह की फिल्म अमर अकबर एंथोनी। अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना भी इस फिल्म में लीड्स में थे और इसी फिल्म से आपको सुनवाएंगे हम पर्दा है पर्दा। आइए एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए फरमाइशी गीत। आप सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले, मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी। मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ। हाँ।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय Aussies माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
3: वैसे कवाली का भी अपना एक रंग होता है, जहाँ गाना सीधे आपके कानों तक नहीं पहुँचता, सीधे महफिल में उतर जाता है। आइए अभी जरा मूड बदलते हैं और आगे चलते हैं एक और गाने के साथ। इसके पहले कि हम अगली फरमाइश लें, हमारे साथ सुनते रहिए रेजी ब्रिस्वानी और सुनते रहिए फरमाइशी गीत।

चलिए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर जो जतिन की है। और आपने ये फरमाइश ब्रिस्बेन से भेजी है हमें, और आप लिखते हैं कि सताक्षी की काश कुछ रिश्ते कभी खत्म ना होते, काश के हम उन रिश्तों को सिर्फ जीते जाते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार सोचता हूँ कि मैं रिश्तों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व क्यों हो गया, अक्सर मैं ही क्यों चोट खाता हूँ। और जब भी ऐसा लगता है, मैं सुनता हूँ फिल्म मन का गाना, चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम, तो आज भी मैं इसी गाने की फरमाइश करना चाहता हूँ। सो अगर हो तो प्लीज प्ले कीजिएगा। बिल्कुल अभी आपके लिए ये गाना हम प्ले करेंगे। और जहां तक बात रही कि आप क्यों ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, यू नो, जो लोग सच्चे दिल से प्यार करते हैं ना, वो सच्चाई के साथ ही इन्वॉल्व होते हैं। हम सभी होते हैं, और कुछ लोग होते हैं ऐसे जो सच्चाई की वैल्यू नहीं कर पाते, और आखिर में जाकर उन्हीं को प्रॉब्लम होती है फिर, क्योंकि उन्हें सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती है, सच्चा कोई चाहने वाला नहीं मिलता है, है ना। तो प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल नहीं है, आप ऐसे ही रहिए जैसे आप हैं। आपके लिए फिल्म मन से प्रे करते हैं चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम। आमिर खान और मनीषा कुरैला का ये खूबसूरत गाना सुनिए, और सुनते रहिए हमारे साथ रेडियो ब्रिस्बेन पर फरमाइशी गीत।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: त्रिशा का है दोस्तों हमारे पास अगला मेल, और आपने हमें लिखा है कनाडा से, और आप लिखती हैं कि सताक्षी फरमाइशी गीत मैं रेगुलरली सुनती हूँ, और मेरा और मेरी दीदी दोनों का ये बहुत ही फेवरेट शो है। हम सबकी फरमाइशों को बहुत इंजॉय करते हैं, और आज हम अपनी फरमाइश भेजना चाहते हैं। हम दोनों का एक डांस कॉम्पिटिशन है यहाँ पर, और जिसमें बॉलीवुड की थीम पर हमें डांस करना है। हमने चुना है निमोला फिल्म हम दिल दे चुके सनम से, और इसी गाने की प्रैक्टिस इस वक्त हम फरमाइशी गीतों के थ्रू करना चाहते हैं, सो प्लीज प्ले कीजिएगा। तो भाई इतना प्यारा आपने एहसास जगा दिया है कि आप बॉलीवुड के गानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कनाडा में, और इस वक्त आप सुनना चाहते हैं निमोला, तो ये गाना तो बनता है भाई, आपकी प्रैक्टिस के नाम, आपकी जीत के नाम ये गाना तो बनता है। इंजॉय कीजिए आप दोनों बहनों के लिए निमोला हम दिल दे चुके सनम से, और आई होप कि बाकी के लिसनर्स को भी मजा आने वाला है। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रसमानी।

फ्रेंड्स, ये था आज फरमाइशी गीतों का साथ, जिसमें हम आपके साथ थे और आपकी फरमाइशें हमारे साथ थी। आप हमसे जुड़ते रहिए, अपनी फरमाइशें भेजते रहिए, हम उन्हें नेक्स्ट संडे जरूर प्ले करेंगे इसी शो फरमाइशी गीतों में। लेकिन ये वक्त जो अभी है, ये है आज के प्रोग्राम से विदा लेने का, इजाजत लेने का। सो अपना ख्याल रखिए, जिंदगी को जीते रहिए, मस्त रहिए और मंडे की तैयारी करिए। हाँ, दो दिनों के वीकेंड्स के बाद कल ऑफिस है आपका और एक नए वीक की शुरुआत है। सो ऑल द बेस्ट, और अभी लेती हूँ इस सफर से विदा। नमस्ते।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

दीवानों पर हाथ न डालो, इस जिद में पछताओगे। सारे शहर में किस किस को तुम जंजीरें पहनाओगे। भूल है कोई खार नहीं हम, आओ हम में आ बैठो। खुशबू में आबाद रहोगे, खुशबू ही कहलाओगे। खुशबू ही बने रहिए, महकते रहिए, महकाते रहिए, बिल्कुल मेरे यानी निलय के साथ बने रहिए पल दो पल पर। नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप? एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर मैं पल दो पल। यही है हमारे शो का नाम जिसे आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी पर। संडे की शाम में हम शुरुआत करते हैं आज के पल दो पलों की। आप मेरे साथ रहेगा, ये पल मेरे साथ आपको बिताना, याद रखेगा आप, हाँ वादा कीजिए। तो शुरू करता हूं कि वो एक नन्ही सी लड़की, जरा गौर से सुनिएगा, हो सकता है कि ये कहीं आपके आसपास की कोई कहानी बयां कर रहा हो, कि वो एक नन्ही सी लड़की बर्फ के गाले से नाजुक तर, हवा में झूलती शाखों की खुशबू उसका लहजा था, चमकते पानियों जैसी सुबक रौ उसकी बातें थी, वो उड़ती तितलियों के रंग पहने जब मुझे तकती तो आंखें मीच लेती, मगर अब वो नहीं है, मगर अब वो नहीं है, खुदा जाने कहां किस हाल में है। मैं हर उजड़े हुए मौसम में उसको याद करता हूं तो आंखें मीच लेता हूं, तो आंखें मीच ले

कभी कहीं इतना बेघर लगता है मन, कपड़े बदलते हुए भी लगता है जैसे घर बदल लिया। और तभी तो जब बेघर सा हो जाता है मन, मैं आपके पास चलाता हूं एक बार फिर से आपका स्वागत। पल दो पल का साथ हमारा और आपका जरूर रहे, ये वादा आपने किया था ऐसा मैं मान रहा हूं। मैंने किया है, पर ये वादा मैं आपके साथ रहने वाला हूं। ये याराना ये यूं ही आबाद रहे और गहरा रहे, हम यही चाहते हैं, लंबी दूरी तक चले। क्योंकि मैं हर रविवार को आपसे मिलने चला आता हूं, सजाता हूं पल दो पल की महफिल, जहां मैं आपको बहुत सारे गाने सुनाता हूं, कुछ अपने दिल की कहता हूं, कुछ आपके दिल की सुनता हूं।

कांटों में जो फूल खिला है जब देखो हंसता रहता है, कांटों में जो फूल खिला है जब देखो हंसता रहता है, डाली पर एक पीला पत्ता जाने क्या गिनता रहता है। सुनते हैं एक हवा का झोंका इस खुशबू को ले भागा है, सुनते हैं एक हवा का झोंका इस खुशबू को ले भागा है, बहते पानी पर दीवाना किसको खत लिखता रहता है। किसको खत लिखता है, खत में क्या क्या लिखता है, ये तो हम पढ़ नहीं सकते, पर उन खतों में, हर्फों में छिपी खुशबुओं को सिर्फ वो पहचान सकता है जिनके लिए वो खत लिखा गया हो। मुझे पूरा यकीन है कि वो पहचान जाएगा।

बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हाँ जी, वेलकम बैक। चाहे कैसा भी वक्त हो, बदलना सीखे जनाब। आज मैं बदलने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब साल भी बदलने वाला है, कैलेंडर भी बदल लेंगे आप, और न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी एक बार नए सिरे से आप करेंगे लेंगे, और पता नहीं कितने आप पूरे कर पाते हैं। मैं कभी नहीं पूरा कर पाता, इसलिए मैं कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेता ही नहीं हूँ। एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल, मैं हूं निलय, और कुछ पलों के म्यूजिकल ब्रेक के बाद आपसे फिर से हाजिर हो गया हूं आपके साथ बिताने के लिए पल दो पल। करूं कुछ अर्ज अगर आप कहें तो, और अगर आप नहीं भी कहेंगे तो मैं तो अर्ज करने वाला हूं। तो जनाब इरशाद कह दीजिए, सिर्फ एक सफा, सफा कहते हैं पेज को, कि सिर्फ एक सफा पलट कर उसने बीती बातों की दुहाई दी है, फिर वहीं लौट के जाना होगा, यार ने कैसी रिहाई दी है।

बैठे बिठाए हाल दिल जार खुल गया, मैं आज उसके सामने बैठकर बेकार खुल गया। वेलकम बैक। मैं अपना हाल दिल तो बयां कर देता हूँ, पर आप लोग कुछ नहीं कहते, क्यों? आइए ना, बताइए मुझे अपने दिल का हाल, क्या सोचते हैं आप इस प्रोग्राम के बारे में। रेडियो ब्रिजवाणी के ऑफिशियल पेज पर आइए और दिल खोलकर दिल की तमाम बातें हमसे कहिए, लिख भेजिए। तो मैं कुछ अर्ज कर दूं कि मैं तुझे ढूंढने निकला घर से और अपना ही पता भूल गया। मैं तुझे ढूंढने निकला घर से और अपना ही पता भूल गया। अब न वो तू है न मैं, न वो रास्ता है न पेड़, न वो मंदिर है न कुटिया न चराग। आओ ढूंढे, मैं तेरे कुर्ते का दामन थामूं, मैं तेरे कुर्ते का दामन थामूं। आओ हम रेल बनाएं, आओ हम रेल को पीछे ले जाएं। वैसे तो अक्सर कहते सुना है हमने कि जिंदगी एक सफर है और उस सफर में एक पूरा नया सफर है, इश्क। जिंदगी की तमाम खुशियों गमों से परे एक अलग ही एहसास है। इश्क में हो तो दिल किसी रेल के इंजन की तरह धुकड़ धुकड़ करता है, चाहे वो खालीपन में हो या फिर अपने प्यार से मिलने के लिए धुकड़ धुकड़ कर रहा हो। आज हम आपको लिए चलते हैं किसी रेल की पटरी पर, जहां से जब धड़धड़ा के गुजरे कोई ट्रेन तो उसकी जुल्फें उड़ा दी हवाएं, दो बोगियों के बीच के गैप से बड़ा सा पीला चांद बार बार झांकता रहे। आइए ले चलें आपको उस दौर में किसी ट्रेन के सफर पर।

वेलकम बैक। ये मोहब्बत के सफर की रेल का एक ऐसा एहसास है जो मुसलसल चलता ही रहता है, जैसे रेल के डिब्बे लगे रहते हैं कि बाद एक के पीछे एक। वैसे ही आपसे मिलने की इच्छा हमें ले आती है इतवार दर इतवार। तो कुछ अर्ज कर देता हूं कि इतनी रेलें चलती हैं भारत में, मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, तो इतनी रेलें चलती हैं भारत में, कभी कहीं से भी आ सकती हो मेरे पास। इतनी रेलें चलती हैं भारत में, कभी कहीं से भी आ सकती हो मेरे पास, कुछ दिन रहना इस घर में जो उतना ही तुम्हारा भी है। तुम्हें देखने की सुनने की प्यास है गहरी, तुम्हें देखने की सुनने की प्यास है गहरी, कुछ दिन रहना जैसे तुम गई नहीं कहीं। तुम्हें भी अपने काम में ज्यादा मन लगेगा मुझसे फिर एक बार मिलकर लौटने पर। दुख सुख हो तो आते जाते रहेंगे, सब कुछ पार्थिव है यहां, लेकिन मुलाकातें नहीं है पार्थिव, इनकी ताजगी रहेगी यहीं हवा में। और इन्हीं हवा में बहते हुए रेडियो तरंगों के जरिए मैं भी आप तक पहुंच रहा हूं और पहुंचा रहा हूं ये बेहतरीन नगमे रेडियो ब्रिस्वानी पर। कीप लिसनिंग।

निलय के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी पर पल दो पल, या मैं कहूंगा कि आप बिता रहे हैं ये खूबसूरत पल दो पल। पता नहीं आपके लिए खूबसूरत है या नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत खूबसूरत है क्योंकि मैं यहां पर आपके साथ मुखातिब हूं, आपसे मिल रहा हूं। तो जिंदगी की राह में एक ऐसा मोड़ आएगा जिसके आगे हर कोई खुद को अकेला पाएगा। कौन कितना जब्त कर सकता है कर्ब हिज्र को, रेल जब चलने लगेगी फैसला हो जाएगा। क्योंकि रेल जब चलने लगती है तब दिल को थामे रखना जरूरी होता है। प्लेटफॉर्म पर कितने चेहरे, कितने मंजर, कितने हाथ छूट जाते हैं और किसी खास शख्स की उन छूटती उंगलियों की छुअन देर तक हवा में हिलता हुआ हाथ नजरों से जाता ही नहीं है, बल्कि नजरों में ही बस जाता है। तलाश मेरी थी और भटक रहा था वो, तलाश मेरी थी और भटक रहा था वो, दिल मेरा था और धड़क रहा था वो। प्यार का ताल्लुक भी अजीब होता है, आंसू मेरे थे और सिसक रहा था वो।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है, और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

ये उम्मीद और बीम का आलम, कौन से दिन मंढे चढ़ेगी बेल। हाय ये इंतजार के लम्हे, जैसे सिग्नल पे रुक गई हो रेल। आप एक काम कर सकते हैं, इश्क का ये सफर तय कर सकते हैं, करते करते तराने भी सुन सकते हैं, गुनगुना भी सकते हैं, अपने जज्बात हमें लिखकर भेज सकते हैं। आप सुन रहे हैं पल दो पल, या यूं कहूं बिता रहे हैं पल दो पल अपने निलय के साथ रेडियो बिस्वानी पर। इस तरह रेल की हमराह रवा है बादल, बादल भी ट्रेन के साथ साथ चलते ना। इस तरह रेल की हमराह रवा है बादल, साथ जैसे कोई उड़ता हुआ मैखाना चले। शहरे जाना में उतरने की थी हम पर कदगन, यूं चले जैसे कोई शहर से बेगाना चले। हम आज आपको अपने साथ रेल की पटरियों पर लेकर चले हैं। एक पटरी पर आप, दूसरी पटरी पर हम चल रहे हैं, आपका हाथ थामे हुए। सुनते रहिए और बने रहिए रेडियो ब्रिस्वानी पर अपने निलय के साथ।

0: छुक छुक आएगी, छुक छुक आएगी, मुन्ने के डैडी जी को लाएगी।
1: अच्छा,
0: दिल्ली से रेल गाड़ी छुक छुक आएगी, छुक

रेल के सफर पर कई ऐसे अनजान चेहरे होते हैं जिनसे हम जुड़ जाते हैं। वो कुछ घंटे इस जिंदगी के सफर के लिए बेहद यादगार बन जाते हैं। कभी कभी तो कोई याद इतनी खास होती है कि हर उम्र की तमाम परतों के भीतर कहीं गहरे में दबे हुए उस चेहरे को जब तक अपनी आंखों के सामने आप महसूस नहीं कर लेते हैं और यादों की मालगाड़ी पर सवार होकर निकल नहीं पड़ते हैं, तब तक चैन ही नहीं पड़ता। सवाल यह है कि आपस में हम मिले कैसे। अर्ज कर रहा हूं कि सवाल यह है कि आपस में हम मिले कैसे। हमेशा साथ तो चलते हैं दो किनारे भी, बड़े सुकून से डूबे थे डूबने वाले, जो साहिलों पे खड़े थे बहुत पुकारे भी। जैसे रेल में दो अजनबी मुसाफिर हों, सफर में साथ रहे यूं तो हम तुम्हारे भी। फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद आपसे जब मिलेंगे तो आपसे और बातें करेंगे। आप भी किसी अपने सफर की याद ताजा कर सकते हैं, हमसे शेयर जरूर

दुख की लहर ने छेड़ा होगा, याद ने कंकर फेंका होगा। आज तो मेरा दिल कहता है तू इस वक्त अकेला होगा। मेरे चूमे हुए हाथों से औरों को खत लिखता होगा। भीग चली अब रात की पलकें, तू अब थक कर सोया होगा। रेल की गहरी सीटी सुनकर रात का जंगल गूंजा होगा। मैं तो आज बहुत रोया हूं, तू भी शायद रोया होगा। नासिर तेरा मीत पुराना, तुझको याद तो आता होगा। रेल की आवाज आज भी किसी धुन से कम नहीं लगती है, मुझे तो नहीं लगती है। कभी सुना है आपने? याद कीजिए कभी आप जब इंडिया में थे, रात को जब कोई रेल की आवाज आती थी, रेल की सीटी की आवाज फजा में गूंजती थी और वो आवाज हमें हमारे होने का, जिंदगी के सफर पर होने का एहसास कराती थी। इन्हीं एहसासों को आज हम जी रहे हैं पल दो पल में।

वेलकम बैक। इश्क की रेल यात्रा पर हैं आज आप निले के साथ। समा कुछ सुहाना है और इस सफर पर एक नज्म और पेश कर देता हूं मैं। भाई मेरा तो यही दस्तूर पुराना है। आसमानों से जमीन की तरफ आते हुए हम, एक मजमे के लिए शेर सुनाते हुए हम। आसमानों से जमीन की तरफ आते हुए हम, एक मजमे के लिए शेर सुनाते हुए हम। तोड़ डालेंगे किसी घने जंगल का गुरूर, लकड़ियां चुनते हुए आग जलाते हुए हम। तुम तो सर्दी की हंसी धूप का चेहरा हो, जिसे देखते रहते हैं दीवार से जाते हुए हम। खुद को याद आते ही बेसाख्ता हंस पड़ते हैं, कभी खत तो कभी तस्वीर जलाते हुए हम। रेल देखी है कभी सीने पे चलने वाली, रेल देखी है कभी सीने पे चलने वाली। याद तो होंगे तुझे हाथ हिलाते हुए हम, याद तो होंगे तुझे हाथ हिलाते हुए हम।

वेलकम बैक, मैं हूं नीले आपके साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर। पल दो पल का ये खूबसूरत सफर चल रहा है यहाँ पर, और आज हम रेल की बात कर रहे हैं। हमने फिल्मों में भी तो देखा है रेल को, कई मिलने बिछड़ने के सीन्स फिल्म के प्लेटफॉर्म पर ही हुए हैं। गुलजार साहब की एक फिल्म है इजाजत, जिसमें रेखा, नसीरुद्दीन शाह और अनुराधा पटेल हैं। तो एक सीन है जिसमें रेखा और नसीरुद्दीन शाह ट्रेन के डिब्बों की खड़खड़ाहट के साथ, कितने ही एहसास उन दोनों के दिल में भी धड़कते रहते हैं। फिलहाल एक और नज्म ले आया हूं मैं आपके लिए, आइए सुनते हैं। वो सर्द रात जबकि सफर कर रहा था मैं, रंगीनियों से जरफ़ नजर भर रहा था मैं, तेजी से जंगलों में उड़ी जा रही थी रेल, ख्वाबीदा कायनात को चौंका रही थी रेल, मुड़ती उछलती कांपती चिंघाड़ती हुई, कोहरे की वो दबीज रिदा फाड़ती हुई, बेनूर होके डूबने वाला था महताब, कोहरे में खुप गई थी सितारों की आबोताब, डाला कभी फजाओं में खत खो गए कभी, झलके कभी उफुक में निहां हो गए कभी, झलके कभी उफुक में निहां हो गए कभी, इंजन से उड़ के कांपता फिरता था यूं धुआं, लेता था लहर खेत में कोहरे के आसमां, उस वक्त क्या था रूह पे सदमा न पूछिए, उस वक्त क्या था रूह पे सदमा न पूछिए, याद आ रहा है किससे बिछड़ना न पूछिए, दिल में कुछ ऐसे घाव थे तीरे मलाल के, रो रो दिया था खिड़की से गर्दन निकाल के, रो रो दिया था खिड़की से गर्दन निकाल

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत इस्तकबाल दिल की तमाम गहराइयों से। मैं हूं निले आपके साथ रेडियो बिरसवानी पर। बहुत खूबसूरत ये पल दो पल मैंने आपके साथ बिताए। आज हमने ट्रेन की बात की। ट्रेन का नाम सुनते ही किसी सफर की यादें जहन में घूमने लगती हैं और ये ट्रेन की तमाम तरह की आवाजें जहन में गूंजने लगती हैं। सफर को महसूस भी किया हमने आज। जिंदगी एक सफर है, ये हम सब जानते हैं। सफर में आप भी हैं, हम भी हैं। फिलहाल तो एक नया साल आपके सफर पर है हमसे मिलने को, और पुराना साल सफर करेगा हमसे दूर जाने को। निले के साथ रेडियो बिरसवानी पर आप सुन रहे हैं पल दो पल। और जाते जाते कुछ अर्ज कर देता हूं आपके लिए कि मंजर गुज़िश्ता शब के दामन में भर रहा है, दिल फिर किसी सफर का सामान कर रहा है। या रत जगों में शामिल कुछ ख्वाब हो गए हैं, चेहरा किसी उफुक का या फिर उभर रहा है। या यूं ही मेरी आंखें हैरान हो गई हैं, या मेरे सामने से फिर तू गुजर रहा है। दरिया के पास देखो कब से खड़ा हुआ है, ये कौन तिश्ना लब है पानी से डर रहा है। है कोई जो बताए शब के मुसाफिरों को, कितना सफर हुआ है कितना सफर रहा है। चलिए अभी निले का पल दो पल का सफर यहीं खत्म होता है। अगले हफ्ते अब आपसे मुलाकात होगी तो एक नया कोरा साल आपके सामने होगा पूरा का पूरा। उसे भर लीजिएगा अपनी तरक्कियों से, यादों से, रंगों से। दीजिए मुझे इजाजत, बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, नमस्कार एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर।

ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जाणो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज एंड associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

योगी से जो बरसों पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त, ऐ

उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हार दिया। ए दोस्त ए दोस्त ए दोस्त।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
3: बिल्कुल, ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओमजोग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूँ?
1: अरे उमसॉक।
0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूँ?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है।

0: omsorg.co.in है, भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलंगाबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality, service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132 दे इलाके विच मौजूद हन।

नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Ataniyar. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज्ड बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

ना बदला में, ना बदला

पहले था कबूतर, अब है ट्विटर, पहले थी बुक, अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम, अब है इंस्टाग्राम, पहले थी जादू की जापी, अब है वीडियो कॉल पे पप्पी। यही सोचकर पिछला और अगला

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on trust.
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असीं तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है तां जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

जीवन अमूल्य है। इस जीवन में हमें जो कुछ मिला है वो सब अमूल्य है, और वो सब हमें प्राप्त हुआ है उस ऊपर वाले की कृपा और उसकी रहमत से। उसी रहमत को धन्यवाद देने के लिए, उसका शुक्रिया कहने के लिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड देने के लिए अपने जीवन आधार के सफर में आज हम और आप फिर से एक साथ आ गए हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ सताक्षी आज एक बार फिर से। और जीवन एक ऐसा भंवर है जिसे पार करने के लिए एक बेस की, एक आधार की बहुत जरूरत है, और वो हमें मिलता है तब जब हम अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं, अपने ईश्वर को प्राप्त करना शुरू करते हैं और उसकी ओर बढ़ना शुरू करते हैं, हम मनुष्यता को प्राप्त करते हैं। आइए आज ऐसे ही एक सफर पे फिर से अपने जीवन के आधार को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं जीवन आधार में रेडियो ब्रह्मवाणी 1701 एम पर सताक्षी के साथ, और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए मेरे साथ।

जीवन आधार आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रजवाणी 1701 पर और आपके साथ इस सफर में सताक्षी है। धैर्य यानी कि पेशेंस सीखा कई बार है लेकिन समझ हम और आप नहीं पाते हैं, लेकिन धैर्य जो इंसान रखता है, जो इंसान पेशेंस रखता है, वही इंसान जीवन में तरक्की कर पाता है, वही इंसान जीवन में वो सब कुछ हासिल कर पाता है, पा पाता है जो वो पा सकता है, और वो भी अपनी इच्छा के अनुसार। अगर आप भी अपने मन मुताबिक चीजें पाना चाहते हैं तो धैर्य रखिए। आज बेशक आपके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन अगर धैर्य और मेहनत आप रखेंगे, यानी कर्म अपने अच्छे रखेंगे और पेशेंस रखेंगे, ऊपर वाले पर भरोसा रखेंगे, तो निश्चित तौर से आज ना सही लेकिन आप जीवन में वो सब हासिल कर पाएंगे जो असल में आप डिजर्व करते हैं और आप पाना चाहते हैं। आइए इसी बात पर एक और गीत को यहाँ पर सुनते हैं। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

सुबह के कुछ अमूल्य विचार जीवन आधार में इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी 1701 एम पर। और इन विचारों में आपके साथ सताक्षी भी अपने कुछ विचार घोल रही है और इस सफर को और भी खूबसूरत बना रही है। सुनते रहिए जीवन आधार और यूं ही रहिए मेरे साथ।

अक्सर हम डर जाते हैं जब लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं, अक्सर हम घबरा जाते हैं, हमें लगता है कि अब कैसे ही हम इस जीवन में आगे बढ़ेंगे या हम कैसे कुछ भी जिंदगी में कर पाएंगे। तो देखिए, जिंदगी में घबराइए नहीं, डरिए नहीं, क्योंकि आपके साथ वो खड़ा है जो इस दुनिया में सबसे बड़ा है। याद है ना कि कैसे भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ खड़े हो गए थे और अपनी पूरी सेना को भी कौरवों को दे दिया था, उसके बाद भी जीत पांडवों की हुई। इसलिए जब आपके साथ वो ऊपर वाला खड़ा है तो फिर डर भय किस बात का है। आप जीवन में सही कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए और बाकी सब कुछ उस पर छोड़ दीजिए। आइए इन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं जीवन के आधार को, यानी कुछ ऐसी बातों को जो आपकी सुबह को भी खास बना रही हैं और सुबह में ऐसा रस घोल रही हैं जो मिठास का रस है, प्रभु भक्ति का रस है, ईश्वर की प्राप्ति का रस है और उस ऊपर वाले पर विश्वास का रस है। इसी रस के साथ, इसी भक्ति रस के साथ आगे बढ़ेंगे। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

अक्सर लोग आपसे ये उम्मीद करते हैं कि उनकी हर बात पर आप रिएक्ट करें, श्रोताओं हर बात पर आप बोलें। अक्सर लोग आपको उकसाते भी बहुत हैं, बहुत परेशान करते हैं कि आप बोलें कोई बात हो और फिर लोगों के आगे तमाशा बने। लेकिन ऐसी जगह पर मौन धारण कर लेना, मौन हो जाना, शांत हो जाना, इससे अच्छा कोई साधन नहीं है। लोगों के तीखे शब्द, तीखे बाण आपको लगते जरूर हैं, लेकिन बस इतनी बात समझने की जरूरत है कि वो आपको इसलिए उकसा रहे हैं ताकि आप पलटकर वार करें, आप अपने शब्दों का वार करें और फिर वो मौन हो जाएं और आप चिल्लाते रहें और वो उसका मजा लें। इसलिए ईश्वर पर कहते हैं ना, कभी कभी चीजें छोड़ देनी चाहिए और मौन धारण करना ऐसे लोगों के लिए खासकर सबसे बड़ा सबक होता है। आइए इसी सबक के नाम ये अगला गीत सुनते हैं और सुनते रहिए जीवन आधार आपके साथ।

कटाक्षी के साथ जीवन को समझने की एक कोशिश आज एक नई सुबह हम और आप मिलकर कर रहे हैं फिर से जीवन आधार के खास सफर में। इसी सफर में आगे बढ़ेंगे। अभी एक और गीत के साथ सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए कटाक्षी के साथ।

लोहे प्रीति है लोहे लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। रेडियो प्रसानी 1701 एम पर जीवन आधार के सफर में श्रोतागण आप हैं सताक्षी के साथ। चुंबक को देखा है ना, मैग्नेट आयरन से उसकी अजब सी मोहब्बत है, ऐसे चिपकता है उससे कि लोहे को भी उठा लेता है। इसी तरह से हमारे शब्द भी हैं। कितना ही कठोर इंसान हो, कितना ही पत्थर दिल इंसान हो, अगर आप उससे मिठास से बोलते हैं, अगर आप उससे प्यार से बोलते हैं, तो आप उसे अपना मीत बना लेते हैं। हमारे शब्दों में वो ताकत है ना कि हम किसी को जान से मार भी सकते हैं और किसी को काल के ग्रास से छुड़ा भी सकते हैं, किसी को मरने से बचा भी सकते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए, प्यारा बोलिए, ताकि लोग ऐसे जुड़ जाएं जैसे लोहा मैग्नेट से जुड़ जाता है, चुंबक से जुड़ जाता है। आइए इसी बात पर, कबीरदास जी की इसी बात पर आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार, आपके साथ है सताक्षी।

ये था आज एक और जीवन की आधार का हमारा और आपका साथ जीवन आधार, जिसमें आप सताक्षी के साथ थे। एक ऐसे ही सफर पर कल फिर से आपके साथ चलूंगी, आपके साथ कुछ अनुभव अपने साझा करूंगी और कुछ मॉर्निंग थॉट्स ऐसे आपके लिए लेकर आऊंगी जो आपकी सुबह को और भी खूबसूरत बनाएंगे और ईश्वरीय शक्ति के साथ आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के सफर से अब लेते हैं इजाजत। नमस्कार।

ट्रिंग ट्रिंग, अरे अरे अरे, अलार्म बंद मत करो। आज अलार्म को भी बोल दिया है, वही तू अपना काम कर, बाकी चांदनी संभाल लेगी। नमस्ते, अदाब, सत श्री अकाल। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी, और अगर आप अभी ब्लैंकेट के अंदर से ये शो सुन रहे हैं ना, तो एक सवाल है भाई, आप उठने वाले हैं या फिर रेडियो को भी ब्लैंकेट के अंदर ले जाने वाले हैं? चलिए जी, ये तो भाई थोड़ा सा जोक हो गया, सुबह सुबह सोचा चलिए आपको हंसा ही देते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, एक डीप ब्रीथ लीजिए और अपने आप को कहिए भाई, न्यू वीक न्यू एनर्जी, नो एक्सक्यूजेस। बस अब मंडे जो है ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है दोस्तों। आज हम बोरिंग मॉर्निंग नहीं करेंगे भाई, आज ब्रिस्बेन की फ्रेश खबरें होंगी, स्पोर्ट्स का मसाला होगा, बॉलीवुड में क्या चल रहा है वो होगा, थोड़ा गॉसिप, थोड़ा गेम, थोड़ा मतलब कुछ ना कुछ चीज होगी जो आपको मजा ही आएगा, और एंड में एक ऐसी पॉजिटिव बात जो आप अपने साथ लेकर जरूर जाएंगे। तो चाय का कप संभालिए, कार का स्टीयरिंग जो है वो संभालिए, और अपना मूड मेरे हवाले कर दीजिए दोस्तों। रेडियो ब्रिस्वानी, लेट्स स्टार्ट मंडे डिफरेंटली। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं, इस गीत के साथ, सिर्फ और सिर्फ रेडियो ब्रिस्वानी में।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्बानी में। सो चलिए जी, अब करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। वैसे दोस्तों, मंडे मॉर्निंग का एक सीक्रेट बताऊं मैं आप सभी को। आप मंडे को जितना डिफिकल्ट समझते हैं ना, मंडे उतना ही डिफिकल्ट होता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी जो माइंड है वो उस जगह ले जाते हैं ना कि भैया आज तो बहुत मुश्किल होगा, बहुत चीजें ऐसी आएगी, बहुत कुछ हमें फेस करना पड़ेगा, तो हमारे साथ वैसा ही होता है। लेकिन मंडे सच में उतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना हम बनाते हैं। प्रॉब्लम मंडे नहीं होता दोस्तों, प्रॉब्लम होता है हमारे संडे नाइट का ये डायलॉग, कल से पक्का रूटीन बनाऊंगी या बनाऊंगा, और मंडे सुबह कल से, है ना, तो आज कल से नहीं आज से, है ना। ये जो चीज होती है वो हमारी जो मेंटल स्थिति होती है ना, उनको डिस्टर्ब कर देती है। इसीलिए हमेशा दोस्तों, आज का काम जो है आज कर लीजिए, उसको पेंडिंग कभी मत छोड़िए। एक इम्पॉर्टेंट फोन कॉल है उसको कल पे मत छोड़िए, कोई मेल करनी है, मैसेज करना है, कोई भी काम होता है उसको कल पर मत छोड़िए। और दोस्तों, हमेशा हंसते हुए अपने दिन को, अपनी मॉर्निंग को, अपने प्यार को, मतलब कहते हैं ना, खूबसूरत बनाना हमारे हाथ में होता है। क्योंकि दोस्तों, हर काम अगर हम कल पे छोड़ते हैं ना, तो वो डिफिकल्ट दिन जो है खुद ही हम बना लेते हैं। इसीलिए कल पे कभी कुछ मत छोड़िए। कभी कभी पूरा वीक दोस्तों चेंज करने के लिए एक दिन का एटीट्यूड चेंज करना ही पड़ता है। आइए इसी के साथ सुनते हैं ये ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बानी।

चलिए जी, अब सीधा चलते हैं ब्रिस्बेन की लेटेस्ट हेडलाइंस पर। और संडे रात दोस्तों ब्रिस्बेन और क्वींसलैंड के स्पोर्ट्स फैन के लिए काफी बड़ा था। 2026 NRL ग्रैंड फिनाले का जो रिजल्ट है वो आ गया है। सिडनी रूस्टर्स और न्यूकास्टल नाइट्स के बीच हुआ फाइनल न्यूकास्टल के फेवर में नहीं गया। रूस्टर्स ने 1918 से नाइट्स को हरा कर अपना 16th NRL टाइटल जो है वो जीता। और नाइट्स के लिए दोस्तों कैलिन पोंगा ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है, जबकि डैली चेरी इवेंट्स भी ग्रैंड फाइनल स्टोरी का इम्पोर्टेंट पार्ट रहे हैं। एक पॉइंट का डिफरेंस, जी हाँ, यानी 1918, मतलब वो वाला मैच जिसमें लास्ट मिनट तक हार्ट बीट नॉर्मल रहना मुश्किल है। वैसे दोस्तों ब्रिस्बेन ब्रोंकोस फैंस के लिए भी NRLW रिजल्ट्स भी इम्पोर्टेंट है। सिडनी रूस्टर्स ने ब्रिस्बेन ब्रोंकोस को हराकर NRLW जो प्रीमियरशिप है वो जीती और क्लब के लिए 101 ईयर यानी कि 101 ईयर्स माइलस्टोन कंप्लीट

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्वानी में। अब एक इम्पॉर्टेंट मंडे मॉर्निंग वेदर चेक दोस्तों। ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी के जो लेटेस्ट ब्रिस्बेन फोरकास्ट के मुताबिक मंडे को यानी कि आज ब्रिस्बेन में पार्टी क्लाउडी कंडीशंस रहेगी। मॉर्निंग टेम्परेचर अराउंड 17 डिग्री के आसपास से स्टार्ट हो सकता है और मैक्सिमम अराउंड 29 डिग्री तक जाने का फोरकास्ट है। आफ्टरनून इवनिंग में शावर का स्लाइड जो है वो चांस है और वेस्ट में थंडरस्टॉर्म का पॉसिबिलिटी भी दी गई है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, यूवी इंडेक्स 10 यानी कि वेरी हाई, तो सनस्क्रीन भूलना नहीं है। अगर आप कम्यूट कर रहे हैं तो दोस्तों लेटेस्ट ट्रैफिक और वेदर अपडेट चेक करके जरूर निकलेगा। और हाँ, क्विंसलैंड की एक अच्छी बात है, ब्रिस्बेन में डे लाइट सेविंग नहीं होती है। ऑस्ट्रेलिया के NSW विक्टोरिया और तास्मानिया एक्ट और साउथ ऑस्ट्रेलिया जैसे जो स्टेट्स हैं उसमें क्लॉक से एक घंटा जो है आगे हो चुकी है। तो दोस्तों इंटरस्टेट फैमिली को कॉल करते वक्त टाइम डिफरेंस चेक जरूर कर लेना। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में। अब 1 मिनट में ऑस्ट्रेलिया की कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरीज। ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज द फ्लाई दुबई कॉकपिट अटैक के अक्यूज्ड को पायलट के ऑस्ट्रेलिया लिंक्स इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। AFP इन्वेस्टिगेशन ये देख रही है कि अक्यूज्ड का ऑस्ट्रेलिया से क्या कनेक्शन रहा है। ये डेवलपिंग स्टोरी है, इसीलिए डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन के साथ चेंज हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों ये भी बता दें आपको कि जय एरो और फॉर्मर वेलाबाय नाथन चार्ल्स दोनों मोटर न्यूरो डिजीज से अफेक्टेड है और NRL ग्रैंड फिनाले से पहले फैंस ने उनके स्पोर्ट में स्पेशल एरो गेस्चर किया है। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फैंस ने ट्रिब्यूट में पार्टिसिपेट किया। और दोस्तों स्पोर्ट्स कभी कभी ना सिर्फ कॉम्पिटिशन नहीं होता, कभी कभी पूरा स्टेडियम एक फैमिली बन जाता है। आइए इसके साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

इसी के साथ आइए अब चलते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया में एशियन गेम्स में इंडिया ने फोर्थ पोजीशन फिनिश की है। स्पोर्ट्स फैन के लिए एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन जो है शुभम गिल ने वर्ल्ड कप से पहले कहा है कि टीम के पास एक्सपेरिमेंटेशन के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। इंडिया वेस्ट इंडीज सीरीज के बाद ये डिस्कशन इम्पोर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड कप प्रिपरेशन अब सीरीज फेस में एंटर कर रही है। और एक पॉजिटिव एनवायरमेंट स्टोरी दोस्तों ये है कि राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क में दो कैप्टिव ब्रीड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स रिलीज किए गए हैं। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है और वाइल्ड में इनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम रह गई है। नेचर की प्रोटेक्शन की ये छोटी सी न्यूज एक्चुअली बहुत बड़ी न्यूज है। आइए इसके साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिसवानी में। तो अब दोस्तों आपकी चाय में थोड़ा सा बॉलीवुड मसाला तो बनता है क्योंकि फिल्मी तड़का ऑन हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं दृश्यम 3 की। अजय देवगन की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रॉन्ग रन कर रही है। डे 2 की बात करें तो दोस्तों डे 2 के बाद वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अराउंड 177 करोड़ रिपोर्ट हुआ है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर भी अजय देवगन के करियर की बिगेस्ट ओपनिंग दी है। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिजवानी में। अब दोस्तों, शो के एंड से पहले आज का मंडे रिसर्च करते हैं। आज किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, आज बस खुद को डिसअपॉइंट मत करिएगा। अगर कोई गोल बड़ा है, उसे छोटे पार्ट्स में जरूर तोड़ दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, उसे इग्नोर नहीं, स्टेप बाय स्टेप हैंडल करिए। अगर किसी ने या किसी से नाराज है, तो ईगो से पहले रिलेशनशिप की वैल्यू जरूर सोचिए। और अगर खुद से ही परेशान है दोस्तों, तो थोड़ा सा जेंटल हो जाए। हर दिन प्रोडक्टिव नहीं होता है, हर दिन परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हर दिन एक नई पॉसिबिलिटी लेकर जरूर आती है। आज का सेंटेंस यही है दोस्तों, आई डोंट नीड अ परफेक्ट डे, आई जस्ट नीड अ मीनिंगफुल वन। बस इसी थॉट के साथ आज का दिन जो है शुरू जरूर करिएगा। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पे दोस्तों समाप्त होता है। आपका मंडे मस्त हो, चाय गर्म हो, ट्रैफिक जो है वो मैनेजेबल हो, बॉस का मूड अच्छा हो और सैलरी बस टाइम पर आती रहे। टेक केयर ब्रिस्बेन, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड कीप द रेडियो ऑन, रेडियो ब्रिस्बेन। टेक केयर, बाय बाय, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्पानी 1701। हमारे सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ट्रंप ने बनाई सुपर इंटेलिजेंस फोर्स, एआई की दौड़ में अमेरिका को आगे रखने की तैयारी, खुफिया निदेशक को दी कमान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अमेरिका का नेतृत्व बनाए रखने के लिए एक सुपर इंटेलिजेंस फोर्स के गठन की घोषणा की है। नई व्हाइट हाउस टास्क फोर्स संघीय सरकार और एआई कंपनियों समेत विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय करेगी। इसका नेतृत्व राष्ट्रीय खुफिया निदेशक जे क्लेटन करेंगे। मलेशिया से करीब 1500 म्यांमार नागरिक वापस भेजे गए, यूएन ने जताई असुरक्षित हालात की चिंता। मलेशिया से वापस भेजे गए करीब 1500 म्यांमार नागरिक देश के सबसे बड़े शहर यागून पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी और मानवाधिकार संगठनों ने चेतावनी दी थी कि म्यांमार लौटने की परिस्थितियां अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। म्यांमार में 1 फरवरी 2021 को सेना द्वारा आंग सान सू की निर्वाचित सरकार से सत्ता छीनने के बाद से राजनीतिक संकट बना हुआ है। इसके बाद देश भर में व्यापक विरोध शुरू हुआ और म्यांमार का बड़ा हिस्सा संघर्ष की चपेट में आ गया। चार पर हमला करने वाले पायलट का कबूलनामा, बोला मौत से नहीं डरता। फ्लाई दुबई के सह पायलट हमाम अल हमामी ने कथित तौर पर पूछताछ में माना कि वो विमान को क्रैश करना चाहता था और उसे मौत से डर नहीं था। उसने भारतीय कप्तान स्मित मच्छार पर कॉकपिट में हमला किया था। यात्रियों और दो अतिरिक्त पायलटों ने विमान को बचाया। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। अमेरिका ने जानबूझकर खुद को बनाया अकेली ताकत, म्यूनिख में जयशंकर का बड़ा बयान। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने म्यूनिख लीडर्स मीटिंग में वैश्विक व्यवस्था पर हो रहे बदलावों पर चर्चा की। उन्होंने अमेरिका के बदले रुख और चाइना के बढ़ते प्रभाव को मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की प्रमुख विशेषताओं का रूप बताया। जयशंकर ने कहा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा अब दो देशों तक सीमित नहीं है और विभिन्न देशों के पास मौजूद प्रभाव के साधनों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार चयन प्रक्रिया में नहीं कोई तय पैमाना, केंद्र ने सीआईसी को दी जानकारी। बच्चों के सपनों और उनकी असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने वाले प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की चयन प्रक्रिया को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष बड़ा खुलासा किया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए कोई निश्चित न्यूनतम अंक, स्कोर, रैंकिंग या चयन का कोई पैमाना नहीं है। आइए जुड़ते हैं अब खेलों से और सुनते हैं खेल जगत से जुड़ी प्रमुख खबरें। मैच रेफरी बनने के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर ने लिया संन्यास। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज कायनात इम्तियाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। उन्होंने ये फैसला मैच रेफरी की भूमिका निभाने के लिए लिया है। बता दें कि कायनात 16 सालों तक इंटरनेशनल क्रिकेट में सक्रिय रही, लेकिन वो निरंतरता नहीं दिखा सकी, जिसकी वजह से लगातार क्रिकेट नहीं खेल सकी और अब रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्पानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

तुम्हें, होना है जो हो जाता है, आंखों ही आंखों में।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
9: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
11: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
12: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
13: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
14: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
13: अच्छा, वो क्या?
14: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
13: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
14: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
15: And we are back. हम आ गए हैं दोस्तों वापस, और उम्मीद है अगर अभी आपने ज्वाइन किए हैं तो चलो आपका भी स्वागत है रेडियो बिजवानी पर। नंबर है 0430031701। ओके, एक रिक्वेस्ट है, चलो इसको हम पूरा कर देते हैं दोस्तों। विनी, यू वांटेड दिस सॉन्ग।

0: अच्छा रूल्स को थोड़ा और बदलते हैं,
1: या
0: हम ऐसे गाना बजाएंगे जो अच्छा लगता है। नेक्स्ट वन कम्स टू माय माइंड इज व्हाट्स इट, तेरा फितूर, इजंट इट, समथिंग लाइक दैट, पीपल इज नाइस स्मूथ, आई मीन
1: सूदिंग
0: सूदिंग स्मूथ स्मूदी।

ना मैं समझा ना मैं जाना, जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनोरिटा, मगर फिर भी ना जाने क्यों

0: ओके और इस समय 26 मिनट हो गए हैं, 8 बजकर। दोस्तों आपको याद दिला दूं, देवी गौ आज इस कार्यक्रम के बाद में सताक्षी के साथ, और 11 बजे से आप हो जाएंगे संदेश के साथ पंजाबी प्रोग्राम लेकर, और फिर 3 बजे से निविया के साथ। देव बीन हैविंग सम प्रॉब्लम ओवर देयर, सो लेट्स सी इफ दे हैव सॉर्टेड इट आउट। या इफ नॉट देन व्हाट,
1: इफ नॉट देन व्हाट,
0: देन आई गो।
1: I guess you'll have to.
0: Yeah, major things have to happen there. A lot of new things have to be done in the studio. Okay, तो चले आगे बढ़ेंगे। अगला जो गीत है, ये गीत जो है फिल्म, कौन फिल्म का है? Phantom, is it?
1: I don't know. I don't even know what you're playing, firstly.
0: Oh, you don't know. Okay,
1: and then you ask me.
0: You know now. Here you go.

गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, मुझे ये कहना ना बहुत अच्छा लगता है। इसको कहने के साथ रियलाइज होता है कि यार ब्रिस्बेन मेरे लिए कितना खास हो चुका है। और इस खास की वजह ये है कि ब्रिस्बेन ने मुझे पहचान दी है, आप सबसे मिलवाया है, आप सबके घर घर तक पहुंचाया है। सो गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन कहने में अपनी फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि बस आप जहां भी हैं आपके हर एक लिसनर के घर में पहुंच गई हूं। लेकिन ब्रिस्बेन के अलावा भी रेडियो ब्रिस्बेन को बहुत सारे लोग सुनते हैं और अलग अलग देशों से सुनते हैं, राइट? सो जहां से भी आप हमें सुन रहे हैं, जिस भी देश जिस भी कंट्री तक इस वक्त मेरी आवाज पहुंच रही है, आप सबको गुड मॉर्निंग। रेडियो ब्रिस्बेन 107.1 AM पर इस वक्त आप हैं दोस्तों और आपके साथ है सताक्षी। सुबह है, हसीन मौका है, दस्तूर है हमारा कि हम बहुत ही खूबसूरत गाने एनर्जी से भरे हुए, डांस से भरे हुए, रोमांस से भरे हुए यहाँ पर सुनते हैं ताकि उस एनर्जी को हम दिन भर बरकरार रख सकें। सो आज भी ऐसे ही कुछ खूबसूरत गाने सताक्षी आपके लिए लेकर आई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के गाने आपको बहुत बहुत बहुत अच्छे लगने वाले हैं। सो चलिए, देर किस बात की है, जैसा कि मैंने कहा मौका भी है, दस्तूर भी है, सुबह का वक्त भी है हमारा और आपका साथ भी है, तो इंजॉय करते हैं अभी अगला ट्रैक। Keep listening to Radio Brisbane 107.1 AM सताक्षी के साथ, सुनते रहिए। Morning.

वेल फ्रेंड्स, इसके पहले कि हमारे ठापन्स के सफ़र में आगे बढ़ें, बहुत सारी बातें आपसे करें, ये वक्त है कुछ खास, क्योंकि हमें उन खास लोगों को विश करना है जिनके लिए आज का दिन खास है। वैसे आपको बता दूं कि आप सुन रहे हैं ठापन्स और आपके साथ है सताक्षी, और आपको कहती है एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। और जैसा कि मैंने कहा, ये वक्त खास है, तो भाई जिनके लिए भी खासम खास ये दिन इसलिए है क्योंकि आज के बड़े बेबीज हैं वो, बहुत बहुत मुबारक हो आपको आज का दिन। जन्मदिन जो है वो हमें ये बताता है कि हम सबके लिए कितने खास हैं, न जाने कितनी विशेज आती हैं, कितनी प्रायोरिटी हमें मिलती है, हमें कोई हर्ट नहीं करता है, हमसे सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं और हमसे ट्रीट भी मांगते हैं, तो यार पैसे भी खर्च होते हैं। बट कुछ भी कहिए, इस दिन का अपना ही मज़ा है, और मेरी ये दुआ है कि आपकी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही खूबसूरत बनी रहे। जिनकी आज है वेडिंग एनिवर्सरी, उन सबको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है ज़िंदगी की, जो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, यानी कि रोज़ ही कहती हूँ यार, कि ज़िंदगी हमेशा एक सी नहीं होती है। जब आप शादी करते हैं तो आपको लगता है वाह, अब ज़िंदगी बड़े मज़े में कटेगी, लेकिन सच बात यह है कि शादी के बाद ही समझ में आता है कि ज़िंदगी जो है वो सिर्फ फूलों का बिस्तर नहीं है। ज़िंदगी में हमें बहुत सारी परेशानियों को भी फेस करना है, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव भी फेस करने हैं, लेकिन मज़े की बात यह है, आज तक वो उतार चढ़ाव हम हमें अकेले फेस कर रहे थे, और अब उनमें हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ कोई है। सो एक दूसरे का साथ यूं ही निभाते रहिए ज़िंदगी के सफ़र में, और बहुत सारी वेडिंग एनिवर्सरीज जो है वो भी आपकी ज़िंदगी की आनी बाकी हैं। आई विश कि ये रिश्ता हर साल हर दिन खूबसूरत होता रहे। जिनके लिए भी आज का दिन स्पेशल और ख़ास है, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। दुआ है हमारी कि आपकी ज़िंदगी जो है वो खुशियों से भरी रहे, और जो भी कुछ आज के दिन से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिले। और मुझे ये भी लगता है कि अगर मेहनत की है तो फल भी ज़रूर मिलेगा। आप सबको डेडिकेट करने जा रही हूँ ये अगला ट्रैक, इन्जॉय कीजिए इसे और सुनते रहिए सताक्षी के साथ, रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 FM।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

वेलकम बैक, इट हैपन, सुन रहे हैं आप रेडियो ब्रिसानी 1701 AM पर। दोस्तों आपके साथ है सताक्षी और आज सुबह हम फिर से जिंदगी पर एक बार ताजा तरीन बातें कर रहे हैं। आई होप कि आप इस सफर को मेरे साथ सुन भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं और आपको अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, लाइफ में हम ना हमेशा एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरी हरकत करते हैं। जी हाँ, हम हमेशा लोगों से सर्टिफिकेट पाना चाहते हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, हम बुरा कर रहे हैं, या हम उनके मुंह से सुनना चाहते हैं। और अगर बाय चांस कोई कह दे कि नहीं तुम जिंदगी में ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हारा रास्ता ठीक नहीं है, तो हम ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं जिसका क्या ही कहें। देखिए, लाइफ में हमेशा एक बात याद रखिए कि आपको रिजल्ट आप अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं ये किसी से जानने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी को बताने की जरूरत है, राइट? अगर आपको किसी को बताना ही है कि आप जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, या किसी से अपने कर्म को जानना ही है, तो वो ईश्वर है, वो ऊपर वाला है जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है। और किसी को भी आपको ये बताने की जताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। आपके कर्म का फैसला एक्चुअली वही करेंगे, इसलिए सिर्फ उन्हें बताइए, उनकी निगाह में अपने कर्म अच्छे रखिए, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, लेकिन अपनी अच्छाई का किसी को प्रूफ मत दीजिए, है ना? आप जो कर रहे हैं अगर आपकी नजर में आपकी आत्मा के हिसाब से सही है तो वो सही है। सुनते रहिए ठापन सताक्षी के साथ और चलिए आगे बढ़ते हैं और इंजॉय करते हैं ये एक और खूबसूरत ट्रैक। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM।

दोस्तों, हम अक्सर अपनी प्रार्थनाएं लेकर भगवान के पास जाते हैं और ये सोचते हैं कि भगवान उन्हें पूरी भी कर देंगे। आप रोज सुबह जो है भगवान से, ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगने के लिए ही मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर यानी चर्च, गुरुद्वारे जाते हैं, है ना। हमेशा कुछ ना कुछ तो चाहते ही हैं। अदरवाइज कहते हैं ना कि अगर कोई जरूरत ना हो तो हम भगवान को भी याद ना करें। और हमें लगता है कि हमारे जाने से, उनको प्रसाद चढ़ाने से, चढ़ावा चढ़ाने से, दान दक्षिणा देने से हमारी मन्नत जो है पूरी हो जाएगी। पर मैं कहती हूँ कि भगवान ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। आपको पता है कि आप अपने कम्फर्ट जोन से निकले बिना जा रहे हैं कि भगवान मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो। पर एक इंसान जो मेहनत कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, उसने दिन रात एक कर रखा है, आपको क्या लगता है भगवान उसको छोड़कर सिर्फ एक प्रार्थना करने वाले का साथ देंगे? कभी नहीं देंगे, क्योंकि भगवान ने तो खुद ही कहा है ना कि कर्म करो, और जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको उसका फल कैसे मिलेगा। इसलिए सिर्फ प्रार्थना करने से, प्रेयर्स करने से कुछ नहीं होने वाला। इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप हार्डवर्क करें, एक्चुअली वर्क तो करें, हार्डवर्क भी बाद में आता है। सुंदरी सताक्षी के साथ रीजी ब्रस्वानी पर आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी सुनवाती हूँ आपको ये एक और बेहतरीन ट्रैक।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: For aap sun rahe hain Radio Briswani.
2: Hi guys, I'm Madhvi for the Meet Brothers. Aap sun rahe hain Radio Briswani.
3: Hi, this is Salman Khan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Deepika Padukone और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: Welcome back. It happens सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिसवानी 1701 एम पर, और इट हैपेंस में अभी हम हैं आज के गानों की हैट्रिक में। जी, आज के तीन बैक टू बैक ट्रैक्स का साथ लेकर मैं हाजिर हो गई हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज गानों की हैट्रिक में पहला ट्रैक कौन सा लेने जा रहे हैं।

की हैट्रिक सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी पर। गानों की हैट्रिक का ये रहा अगला ट्रैक, इसे भी एंजॉय कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

रेडियो ब्रिस्वानी पर इट हैपेंस सुन रहे हैं आप। सताक्षी आपके साथ है और रेडियो ब्रिस्वानी पर इट हैपेंस में अभी ये वक्त है गानों की हैट्रिक की आज के लास्ट ट्रैक का। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी।

0: नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

जिंदगी में दोस्तों बेटर चीजें ढूंढना या बेटर पाने की चाहत रखना कोई गलत बात नहीं है। अब जाहिर सी बात है, हम जितने सक्षम हैं, जितने कैपेबल हम हैं, हम उससे आगे बढ़ने की सोचते हैं, राइट? और इसमें कुछ गलत नहीं है। आप आए हैं तो इस दुनिया की हर चीज का मजा आपको लेना जरूरी है। आप लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, बट वो चीजें जिन्हें पाने के लिए आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, अपना पूरा टाइम उन पर दे रहे हैं, अपना दिन जो आप सेलिब्रेट कर सकते हैं या जिस दिन को आप खूबसूरत बना सकते हैं, उस दिन की खूबसूरती आप उस चीज को दे रहे हैं, उस अपनी एक विश को दे रहे हैं, तो कम से कम जो आपके पास है उस पर भी तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्योंकि आपको पता है, जो चीजें आपके पास है ना, वो लोगों का सपना है। तो जो आपको कम लग रहा है वो किसी और के लिए बहुत है। इनफैक्ट वो उतना ही मिल जाए इसका सपना देखता है और आपको उसकी वैल्यू तक नहीं है। तो वैल्यू कीजिए ये सोच कर ही कि बहुत लोगों के पास वो नहीं है जो आपके पास है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक सेंटेंस अगर आप सोचेंगे कि हमारे पास जो है वो कितने लोग पाना चाहते हैं या कितनों के पास नहीं है, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको आपके पास जो चीजें हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड आ जाएगा, आप शुक्रगुजार हो जाएंगे ऊपर वाले के। तो आगे बढ़िए जिंदगी में, लेकिन अपनी चीजों की वैल्यू कीजिए, उन पर ध्यान दीजिए, उन्हें इग्नोर मत कीजिए, अवॉइड मत कीजिए। सुनते रहिए सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। आइए अभी बढ़ते हैं आगे इस अगले ट्रैक के साथ।

वाणी पर आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। दोस्तों आज हमने बहुत सारी बातें की हैं जिंदगी पर, जिंदगी के किस्सों पर, और इनफैक्ट अभी भी कर रहे हैं, आगे भी हम करेंगे, लेकिन स्ट्रगल या हार्डशिप के बिना हमारी बातें जो है वो अधूरी हैं, है ना। क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट शो है, हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि हम अपने गोल पर, अपने मोटिव पर पहुँचें, मोटिव पर बरकरार रहें और अपनी मंजिल पर पहुँचें, राइट। सो जिंदगी के ये जो हार्डवर्क या हार्डशिप की बातें हैं इन्हें भी तो करना बहुत ज़रूरी है। देखिए स्ट्रगल या हार्डशिप आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाते हैं। हमें लगता है ना कि यार कितना स्ट्रगल है ज़िंदगी में, कितनी मेहनत अभी और करनी है ज़िंदगी में। ये टफ टाइम जो है, ये टफ तो ज़रूर होता है, लेकिन यही टाइम होता है जो आपको लाइफ टाइम सीख देकर जाता है। सक्सेस आपको कुछ सिखाती नहीं है, वहाँ तो लोग आपको चढ़ाते हैं, आपकी वाहवाही करते हैं। आप जितना सक्सेसफुल होते हैं ना, लोग आपको दुगना उससे बना देते हैं, आपके आगे नकली इमेज जो है वो आपकी और भी खूबसूरत इमेज आपकी खड़ी करके वो अपना फ़ायदा आपसे निकालते हैं और आपका दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन जब आप फेलियर्स का सामना करते हैं, जब आप हार्डवर्क कर रहे होते हैं या फिर जब आपका टफ टाइम चल रहा होता है, उस टाइम आप रियलाइज़ करते हैं कि यार ज़िंदगी का हर पल हमें सिखा रहा है और वो सीख जो है वो आगे आने वाले वक्त में आपके काम आती है। इनफैक्ट आपकी सक्सेस में, आपको उस सक्सेस को बनाए रखने में आपके काम आती है। क्या समझे? सुनते रहिए।